चिंतन तो मनुष्य एकांत में मन के गहरे पर्दे में छिपकर ही करता है, किंतु उसका प्रकाश स्वयं चारों ओर फैल जाता है। वातावरण मनुष्य के विचारों का दर्पण है। जिस तरह एक एक बिंदु से तालाब भरता है, उसी तरह एक एक विचार से मनुष्य जीवन का भविष्य बनता है। विचारों का जैसा चुनाव करेंगे, भविष्य वैसा ही बन जाएगा। अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में समय मत गवाइए। जिस क्षण आप विचारों में उच्चता लाने का संकल्प करेंगे, वही क्षण आपके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बन जाएगा। किसी भी रचनात्मक विचार सारणी का चुनाव कर लीजिए। उसके बीजों का वपन आपके अंतःस्थल की गहराई में शुरू हो जाएगा। विचारों में ही जीने का अभ्यास कीजिए। आपका जीवन विचार

0: तन्मय हो जाएगा। इस मानसिक क्रिया का प्रभाव स्वयं ही आपके दैनिक चेष्टाओं में प्रकट होने लगेगा। विचार कभी प्रभाव शून्य नहीं रहते, प्रभाव प्रकट होने में देर भले ही हो जाए।
1: सुप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज के पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगरबा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2024 के मई महीने के आज 19 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज के हमारी पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती थांगजंग तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रामा। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो दोस्तों, इस सभा को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हमारी पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा को।

आपसे थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर प्रसारित होगा गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

प्रसारित समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप सुनेंगे 8:30 पर। 8:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर।

9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 9:10 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्मी गपशप।

0: 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर आप सुनेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। ग्यारह बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो प्यारे श्रोताओ, ये था आज के हमारे पहली प्रसारण सेवा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा। इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह

0: अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पांच देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रिकेल। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: Prime Minister Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from Norwegian and Indian business and research communities. Earlier, in a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. On the last leg of his five-nation visit, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Rome, Italy, on a two-day state visit today at the invitation of his Italian counterpart, Giorgia Meloni. Prime Minister Modi will have bilateral talks with Prime Minister Meloni. He will also call on the President of Italy, Sergio Mattarella. Mr. Modi is scheduled to hold talks with business leaders to further promote trade and investment between the two countries. Defense Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no first use policy,

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और मैं हूं आपका अपना आरजे कारगर, लेकर आया हूं श्रद्धा, शांति और भक्ति से सजा हुआ भक्ति गीत कार्यक्रम। श्रोताओं, भगवान श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मर्यादा, सत्य, त्याग और आदर्श जीवन का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया है कि कर्तव्य और धर्म का पालन हर परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है। राम का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि विनम्रता, धैर्य और सत्य के साथ हर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। और जब राम नाम संगीत बनकर दिल में उतरता है, तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है। आज के इस पावन कार्यक्रम में हम सुनने जा रहे हैं गजल और भक्ति संगीत के महान गायक जगजीत सिंह की मधुर और आत्मा को चू लेने वाली आवाज में भावपूर्ण राम भजन, हे राम हे राम। तो आइए, मन को शांत कीजिए, श्रद्धा के साथ प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए और शुरुआत करते हैं आज का भक्ति गीत कार्यक्रम।

श्रोताओं, इसी के साथ आज की भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और आज फिर हम लेकर आए हैं एक ऐसी शुरुआत जो आपके दिन को बना देगी हेल्दी, एनर्जेटिक और स्ट्रेस फ्री। दोस्तों, अगर सुबह की शुरुआत सही हो जाए तो पूरा दिन खुद ब खुद शानदार बन जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम में हम रोज लेकर आते हैं योग के आसान और असरदार आसन, सिंपल एक्सरसाइजेस जो घर पर आसानी से हो जाए, और हेल्थ टिप्स जो आपके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाए ताकि आप रहे फिट, एक्टिव और हमेशा खुश। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए और खुद को तैयार कीजिए एक नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी के साथ दिन की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि शुरू हो चुका है सुबह सवेरे, जहां हर सुबह होती है सेहत, सुकून और पॉजिटिविटी के नाम। बने रहिए हमारे साथ और याद रखिए हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, आज के योग सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ाने वाले योग के बारे में। दोस्तों, अपने तन के साथ साथ मन को भी मजबूत बनाने की बात हम करने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मोबाइल, सोशल मीडिया, स्ट्रेस, और ऐसे में ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर रोज थोड़ा सा योग कर लिया जाए तो आपका फोकस, मेमोरी और थिंकिंग पावर तीनों ही बेहतर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के योग सेगमेंट। एकाग्रता बढ़ाने वाले सबसे पहला योगासन है पद्मासन, ध्यान की मुद्रा इसे कहते हैं। इसे आप कैसे करें, जमीन पर बैठ जाएं, दोनों पैरों को उल्टी जांघ पर रखें, रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। इसके फायदे हैं, मन शांत होता है और एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है। अगला है ब्रह्मारी प्राणायाम, इसे आप कैसे करें, आंखें बंद करें और कानों को हल्के से बंद करें, गहरी सांस लेकर ब्रह्म की आवाज के साथ छोड़ें, 5 से 7 बार इसे दोहराएं। इसके फायदे ही, दिमाग को तुरंत शांत करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करता है। अगला है वृक्ष आसन, संतुलन का आसन भी कहते हैं इसे। इसे आप कैसे करें, एक पैर पर खड़े हो जाए, दूसरे पैर को जांघ पर रखें, हाथों को ऊपर जोड़ लें। इसके फायदे हैं, शरीर का बैलेंस सुधरता है और फोकस और स्टेबिलिटी बढ़ता है।

अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने के लिए एक नाक से सांस लें, दूसरी से छोड़ें और यही प्रक्रिया को आप 5 से 10 मिनट तक करें। इसके फायदे हैं, दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ाता है और सोचने और समझने की क्षमता बेहतर होती है। अगला और अंतिम योग है त्रातक, यानी ध्यान केंद्रित करने की क्रिया। इसे करने के लिए सामने एक दीपक या बिंदु रखें, बिना पलक झपकाए उस पर ध्यान केंद्रित करें। 1 से 2 मिनट से शुरुआत करें। इसके फायदे हैं, कंसंट्रेशन पावर तेज होती है और आंखों और दिमाग दोनों को फायदा होता है। दोस्तों, एक छोटा सा टिप, योग हमेशा सुबह करें, मोबाइल से दूरी बनाकर अभ्यास करें, रोज 15 से 20 मिनट का समय जरूर दें। याद रखिए दोस्तों, एकाग्रता कोई जन्मजात चीज नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे आप रोज के अभ्यास के से मजबूत बना सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए और अपने मन को बनाएं और भी पावरफुल। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के अगले योग सेगमेंट में। तब तक फोकस्ड रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आइए सुनते हैं कुमार शानू और देविका पंडित की आवाजों में कभी हाँ कभी ना फिल्म से ये बेहद खूबसूरत गीत।

0: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों इस वक्त आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। तो दोस्तों बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेगमेंट में। दोस्तों आज के इस हेल्थ सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शरीर के अंग की, यानी हमारे कान के बारे में। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी कान की, हम कैसे देखभाल कर सकते हैं। कान सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं बल्कि शरीर का बैलेंस बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनकी सही देखभाल करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं विस्तार से कानों की देखभाल क्यों जरूरी है। सबसे पहले है सुनने की क्षमता बनाए रखने के लिए। अगर हम कानों का ध्यान नहीं रखते तो धीरे धीरे हियरिंग पावर कम हो सकती है। इन्फेक्शन से बचाव, गंदगी, पानी या बैक्टीरिया की वजह से कान में इन्फेक्शन हो सकता है।

और संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखने के लिए कान के अंदर का हिस्सा शरीर के बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो इन सब के लिए कानों की देखभाल करना जरूरी है दोस्तों। और कानों की देखभाल के आसान और जरूरी टिप्स क्या-क्या हैं, चलिए देखते हैं विस्तार से। सबसे पहला है कानों की सफाई सही तरीके से करें। कान को बाहर से साफ कपड़े से ही साफ करें। कॉटन वर्ड्स, फीम या माचिस की तीली अंदर ना डालें। इससे कान का पर्दा यानी ईयर ड्रम खराब हो सकता है। अगला है तेज आवाज से बचे। हेडफोन या ईयरफोन में बहुत तेज आवाज में गाने ना सुने। लंबे समय तक लगातार सुनने से बचे। इससे हियरिंग लॉस का खतरा बढ़ता है। अगला है कानों को सूखा रखे। नहाने या तैराकी के बाद कानों में पानी ना रहने दें। हल्के से तौलियों से बाहर से सुखाए। इससे फंगल इन्फेक्शन से बचाव होता है। दर्द या समस्या को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर कान में दर्द, खुजली, आवाज कम सुनाई दे या पानी पस आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगला है खुद से दवा ना डालें। बिना डॉक्टर की सलाह के एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल ना करें और गलत दवा नुकसान कर सकती है दोस्तों। अगला है सर्दी खांसी का सही इलाज करें। लंबे समय तक जुकाम रहने से इन्फेक्शन कान तक पहुंच सकता है। प्राणायाम भी है फायदेमंद, जैसे अनुलोम विलोम, ब्रह्मारी प्राणायाम। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और कानों को फायदा मिलता है। तो दोस्तों, कानों की सही देखभाल के फायदे हैं। सुनने की क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। संक्रमण और दर्द से बचाव मिलता है। शरीर का संतुलन सही रहता है और ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है। याद रखिए दोस्तों, कानों की सही देखभाल हमें हर आवाज को साफ और सुरीला सुनने में मदद करती है, चाहे वो संगीत हो या अपने अपनों की बातें। इसी के साथ खत्म होता है आज का हेल्थ सेगमेंट। फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टिप के साथ। तब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और अपने कानों का खास ख्याल रखिए। दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। फिल्म हम है राही प्यार के से।

दोस्तों, इसी के साथ आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

0: se se bisira to program me mulim bye sur no ka pecha pa ha kita de ka bisne me tapato do
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है एक अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, जहां हर सुबह मिलती है जानकारी, खबरें और पॉजिटिव वाइब्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। दोस्तों, आज भी हम लेकर आए हैं देश की ताजा राष्ट्रीय खबरें, दुनिया भर की बड़ी अपडेट्स और हमारे अपने अरुणाचल के लोकल डेली न्यूज। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज के राष्ट्रीय ताजा खबरें। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का अलर्ट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कई हिस्सों में सीवियर हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, जमानत नियम है जेल अपवाद। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए से जुड़े एक मामले की सुनवाई में कहा कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत नागरिकों के अधिकार और स्पीडी ट्रायल बेहद महत्वपूर्ण है। इस फैसले को कानूनी विशेषज्ञ बड़ा संदेश मान रहे हैं। आरबीआई में नई नियुक्ति, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुणवीर सिंह को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे अब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण, केरल में नई सरकार का गठन हो गया है और वीडी सातीसन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 20 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। समारोह में कई राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी रही। भारत नीदरलैंड्स संबंध और मजबूत। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नीदरलैंड्स का दौरा किया, जहां दोनों देशों ने व्यापार, एआई टेक्नोलॉजी, जल प्रबंधन और हरित ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका ईरान तनाव के बीच भरी हलचल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर हमले रोक रहा है क्योंकि सीरियस पीस टॉक्स चल रही है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स की अनुमति नहीं दी जाएगी। मध्य पूर्व में ड्रोन हमलों से तनाव बढ़ा। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात में ड्रोन हमलों की खबरों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। यूएई के बारात न्यूक्लियर प्लांट के पास आग लगने की भी रिपोर्ट सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति का चीन दौरा। व्लादिमीर पुतिन आज से 2 दिवसीय चीन दौरे पर हैं। वे सी जिनपिंग के साथ व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। इसे वैश्विक राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। अमेरिका में गोलाबारी की घटना। अमेरिका के सैन डियागो में गोलीबारी की घटना के बाद कई धार्मिक संस्थानों में लॉकडाउन लगाया गया है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, ये था आज का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रुक करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। गवर्नर एक्सप्रेस कंसर्न ओवर पोरस बॉर्डर।

भारत में इसे आखिरी बार आधिकारिक तौर पर लगभग 120 साल पहले दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि ये प्रजाति पूर्वी हिमालय क्षेत्र की मूल निवासी है और इसे असुरक्षित यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। इसी पश्चिमी अरुणाचल में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला दर्रे के पास ऊंचे पहाड़ी घास के मैदानों में किए गए एक व्यापक वनस्पति सर्वेक्षण के दौरान खोजा गया। NEHR urges authority to make Chimpu crematorium functional. Northeast Human Rights ने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे होलोंगी चिंपू में बने इलेक्ट्रिक शमशान को तुरंत चालू करें ताकि विशेष रूप से लावारिस शवों और शिशुओं का सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया जा सके। ये अपील सामाजिक कार्यकर्ता रमेश जेके के हाल ही में सामने आए एक वीडियो के बाद की गई है जिसमें उन्हें शमशान शह कब्रिस्तान में एक शिशु का शव हाथ में लिए गए देखा गया था। NEHR ने बताया कि इस वीडियो में रमेश जेके ने कहा है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद यह सुविधा अभी भी बंद पड़ी है और इसका कई उपयोग नहीं हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑन एक्शन टेकन अगेंस्ट इलीगल मॉस्क माइग्रेंट्स। अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि वे राज्य में कथित अवैध मस्जिदों और अवैध प्रवासियों के संबंध में क्या कार्रवाई कर रहे हैं। फूड कमीशन चेयरमैन रिव्यूज NFSA इम्प्लीमेंटेशन। अरुणाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष तार तारक ने सोमवार को यहां लोअर सुबनसिरी जिले में हुए एक बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। तो दोस्तों, आज के न्यूज सेगमेंट में बस इतना ही। आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम में ये बेहद खूबसूरत गीत जिसे आवाज दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, फिल्म हमारा दिल आपके पास है से।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के अंत में एक और खूबसूरत गीत। आवाज दी है अलका याग्निक, कुमार शानू और सोनू निगम ने, फिल्म क्या यही प्यार है से।

0: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग इंफोटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: Si Akashwani Tanagar Station na sirung ulga tagin program ko gi la yunya bentam ge na si Rajiv Rai. Prime Minister Narendra Modi la Norway ge Prime Minister Jonas

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना अर्जे कार्ग, और शुरू हो चुका है आपका फेवरेट म्यूजिकल प्रोग्राम सदाबहार। दोस्तों, इस खूबसूरत शो में हम लेकर आते हैं ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के ताजा मौसम अपडेट्स, ताकि आप जान सके कि आज दिन भर मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। धूप खिली रहेगी या बादल छाए रहेंगे, हवा ठंडी चलेगी या बारिश देगी दस्तक, और मौसम की इन प्यारी सी बातों के साथ साथ हम आपके लिए सजाते हैं कुछ बेहतरीन सदाबहार गीतों को। तो आइए देखते हैं आज के मौसम का हाल। दोस्तों, अभी इस वक्त ईटानगर में अच्छी खिली हुई धूप निकल चुकी है और मौसम काफी ब्राइट और प्लेजेंट महसूस हो रहा है। तो चलिए बताते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है। सुबह का मौसम, सुबह हल्की ठंडी हवा के साथ शुरुआत हुई, लेकिन अब धीरे धीरे धूप पूरी तरह खिल चुकी है, मौसम साफ और फ्रेश फील दे रहा है। दोपहर का हाल, आज दिन भर ईटानगर में अच्छी धूप बनी रहने की संभावना है। तापमान लगभग 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन हवा में हल्की नमी और पहाड़ी ठंडक की वजह से मौसम बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नहीं लगेगा। आसमान का हाल, आज आसमान ज्यादातर साफ और सनी रहेगा, कहीं कहीं हल्की बादल दिख सकते हैं, लेकिन पूरे दिन ओवरऑल वेदर ब्राइट और खुला रहने वाला है। शाम का मौसम, शाम होते होते धूप थोड़ी नर्म हो जाएगी और मौसम काफी सूटिंग महसूस होगा। तापमान गिरकर करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। हल्की हवा शाम को और भी खुशनुमा बना देगी। रात में मौसम रहेगा आरामदायक और शांत, तापमान लगभग 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान काफी हद तक साफ रहने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज ईटानगर में मौसम रहेगा पूरे दिन खिली हुई धूप, साफ आसमान और प्लेजेंट फील वाला शानदार मौसम। तो अगर आप बाहर जाने का प्लान बना रहे तो आज का दिन एकदम परफेक्ट है। और इसी प्यारी धूप और फ्रेश मौसम के साथ सुनते हैं एक और दिल को सुकून देने वाला सदाबहार गीत, सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: दोस्तों हम लौटेंगे एक और सदाबहार गीत के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। आप भले हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: दोस्तों अरुण FM 103.1 MHz पर सदाबहार का ये खूबसूरत सफर जारी है और अब बारी है एक ऐसे गीत की जो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में छुपे एहसासों की आवाज है। कभी कभी जिंदगी की भीड़ में कुछ ढूंढता रहता है दिल, एक सुकून, एक अपनापन, एक शायद खुद को ही, और यही एहसास बेहद खूबसूरती से बयां करता है ये सोलफुल सॉन्ग जाने क्या ढूंढता है। अपनी अलग ही मैजिकल आवाज और यूनिक स्टाइल में लेकर आए हैं लक्की अली। इस गीत की सिंप्लिसिटी, इसकी मेलोडी और इसके शब्द सीधे दिल को छू जाते हैं और आपको सोचो कि एक खूबसूरत दुनिया में ले जाते हैं।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार

0: और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित

0: वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

हेलो ईटानगर के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस शो में हम लेकर आते हैं आपके लिए टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट और बताते हैं क्यों खास है आज का दिन और आज के दिन कौन सा विशेष दिवस मनाए जाते हैं और साथ ही आपको सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन गीतों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट से। वर्ष 1961 गोवा मुक्ति आंदोलन में बलिदान। 19 मई 1961 को गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान पुर्तगाली शासन के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ। गोवा को आजाद कराने के लिए देश भर में समर्थन और प्रदर्शन हुए। 1961 में ही सिलचर भाषा आंदोलन हुआ। 19 मई 1961 को असम के सिलचर रेलवे स्टेशन पर बंगाली भाषा को मान्यता दिलाने के आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग हुई जिसमें 11 लोगों की जान गई। ये दिन बाराघाटी में भाषा शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। 1991 राजीव गांधी की चुनावी रैली अभियान। 19 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश में चुनाव प्रचार अभियान में व्यस्त थे। इसके 2 दिन बाद 21 मई को उनकी हत्या हुई थी। भारत में विज्ञान और तकनीक का विस्तार। 19 मई के दिन भारत में विभिन्न वर्षों में विज्ञान शिक्षा और तकनीकी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम शुरू किए गए जिन्होंने आधुनिक भारत को मजबूत बनाया। रुक करते हैं विश्व के नजरिए से 19 मई क्यों खास है। वर्ष 1536 एनी वोलन को मृत्युदंड। इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम की पत्नी एनी वोलन को 19 मई 1536 को मृत्युदंड दिया गया। यह ब्रिटिश इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। वर्ष 1890 होची मिन्हा का जन्म। वियतनाम के महान क्रांतिकारी नेता होची मिन का जन्म 19 मई 1890 को हुआ था। वर्ष 1962 मार्लिन मुंड्रो का प्रसिद्ध प्रदर्शन। 19 मई 1962 को मार्लिन मुंड्रो ने अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के जन्मदिन समारोह में हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट गीत प्रस्तुत किया जो बाद में ऐतिहासिक बन गया। वर्ष 1994 जैकलिन कैनेडी ओनासिस का निधन। अमेरिका के पूर्व प्रथम महिला जैकलिन

कैनेडी ओरासिस का निधन 19 मई वर्ष 1994 को हुआ। तो दोस्तों 19 मई का दिन भाषा आंदोलन, आजादी के संघर्ष, राजनीति और विश्व इतिहास के कई बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है। इतिहास हमें याद दिलाता है कि भाषा, संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए लोगों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, आइए सुनते हैं शान और साधना सरगम के युगल आवाजों में कुछ ना कहो फिल्म का ये टाइटल ट्रैक।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हेलो ईटानगर। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम को आगे। और आज के दिन कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? वर्ल्ड आईबीडी डे यानी विश्व आईबीडी दिवस हर साल 19 मई को मनाया जाता है। आईबीडी क्या है? आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बोयल डिजीज। ये पेट और आंतों से जुड़ी गंभीर बीमारी है जिसमें सूजन और डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके मुख्य प्रकार हैं क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसका उद्देश्य है लोगों में आईबीडी के प्रति जागरूकता फैलाना, मरीजों को सही इलाज और सपोर्ट के लिए प्रेरित करना और डाइजेस्टिव हेल्थ के महत्व को समझाना, इसके बचाव और देखभाल, संतुलित भोजन ले, तनाव कम करना, नियमित चेकअप और डॉक्टर की सलाह का पालन करना। और दोस्तों, 19 मई को असम के बारागाती में आज के दिन बासा शहीद दिवस भी मनाया जाता है। इसके इतिहास है 19 मई साल 1961 को सिलचर में बंगाली बासा को मान्यता दिलाने के आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 11 लोगों की जान गई थी। महत्व है भाषा और संस्कृति के रक्षा का प्रतीक, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष की याद, शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन। तो दोस्तों, 19 मई हमें एक तरफ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सीख देता है तो दूसरी तरफ अपनी भाषा और संस्कृति के सम्मान की प्रेरणा भी देता है। यानी सेहत भी जरूरी और अपनी पहचान भी। और अब इसी खूबसूरत सोच के साथ चलिए बढ़ते हैं एक सूटिंग म्यूजिकल ब्रेक की ओर, और सुनते हैं लता मंगेशकर और अदनान सामी की युगल आवाजों में लकी नो टाइम फॉर लव फिल्म से ये बेहद खूबसूरत गीत।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और आप ट्यून कर रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और

0: डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षी बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस होकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into Force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आपका पसंदीदा शो फिल्मी गपशप में। यहां हम बात करते हैं बॉलीवुड की सबसे ताजा गॉसिप की, नई फिल्मों के रिव्यू की, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग वेब सीरीज और रिलीजियस की, टीवी एंटरटेनमेंट के इनसाइड स्टोरीज की और वायरल सॉन्ग, डांस रील्स और सेलिब्रिटी बज की। तो अगर आपको भी इंतजार रहता है कौन सी फिल्म हुई हिट, कौन सी स्लैब और फिर कंट्रोवर्सी में आया, इस वीकेंड ओटीटी पर क्या बिंज वॉच करना है, तो बस अगले कुछ मिनटों तक वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए क्योंकि यहां मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज, ड्रामा भी, ग्लैमर भी, गॉसिप भी और नॉनस्टॉप मस्ती भी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बॉलीवुड के कुछ ताजा तरीन गॉसिप्स और अपडेट्स पर एक नजर। अजय देवगन और अनुभव सिन्हा ने खत्म की 18 साल पुरानी दुश्मनी। दोस्तों, बॉलीवुड में आज की सबसे शॉकिंग न्यूज यही है, अजय देवगन और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा अब फिर साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों के बीच 2007 की फिल्म कैश के बाद दूरी आ गई थी, लेकिन अब दोनों ने पुरानी बातें भूलकर एक नई बिग बजट एक्शन फिल्म के लिए हाथ मिला लिया है। बॉलीवुड में ना दोस्ती परमानेंट होती है ना ही दुश्मनी। अमीषा पटेल ने किया आलिया भट्ट का सपोर्ट। दोस्तों, कांस 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब अमीषा पटेल खुलकर आलिया के सपोर्ट में सामने आई है। उन्होंने कहा कि इंडियंस को अपने स्टार्स को पुल डाउन करने के बजाय सेलिब्रेट करना चाहिए। बॉलीवुड में कंपटीशन अपनी जगह, लेकिन सपोर्ट भी जरूरी है। रवीना टंडन और अक्षय कुमार फिर साथ। दोस्तों, 90s की आइकॉनिक जोड़ी फिर हेडलाइंस में है। फिल्म वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार और रवीना टंडन की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। रवीना ने फिल्म के लिए 18 दिन तक शूटिंग की है। टिप टिप बरसा पानी वाली मैजिक क्या फिर लौटने वाली है दोस्तों, ये देखना होगा। दोस्तों, फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौटेंगे और कपशिप के साथ। फिलहाल सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर कैरून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रामचरण ने दिया सलमान खान और आमिर खान को क्रेडिट। अपने अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फैडी के ट्रेलर लॉन्च पर रामचरण ने कहा है कि दंगल और सुल्तान जैसी फिल्मों ने स्पोर्ट्स ड्रामा जेनर को नई पहचान दी। उन्होंने अपनी इंटेंस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी शेयर की। साउथ ईस्टर्स अब ओपनली बॉलीवुड इंस्पिरेशन को सैल्यूट कर रहे हैं। वेटरन एक्टर अशोक शारफ का कांस डेब्यू ट्रेंड में। दोस्तों, 78 साल की उम्र में लेजेंडरी मराठी एक्टर अशोक शारफ ने पहली बार कांस रेड कार्पेट पर वॉक किया। अपनी पत्नी निवेदिता शारफ के साथ ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन लुक में नजर आई। सोशल मीडिया पर फैंस ने इस मोमेंट को प्योर एलिगेंस बताया। स्टाइल की कोई उम्र नहीं होती और टैलेंट कभी पुराना नहीं पड़ता। भूत बंगला एक्ट्रेस छाया बोरा ने गॉसिप पर तोड़ी चुप्पी। छाया बोरा ने बताया कि गंगूबाई काठियावाड़ी से उनके सीन्स काटने के बाद काफी गॉसिप हुआ था, लेकिन उन्होंने नेगेटिविटी को खुद पर असर नहीं करने दिया। दोस्तों, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में गॉसिप चलता रहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा आंसर होता है। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं वध 2 फिल्म से ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। आज का बर्थडे बज आज सोशल मीडिया पर फैंस पुराने बॉलीवुड स्टार्स और टीवी सेलेब्स के थ्रोबैक क्लिप्स शेयर कर रहे हैं, विशेषकर रेट्रो बॉलीवुड सॉन्ग्स और नॉस्टैल्जिक मूवी सीन्स ट्रेंड कर रहे हैं। ओटीटी वर्सेस थिएटर डिबेट फिर शुरू। दोस्तों, इस वक्त इंडस्ट्री में बड़ा सवाल यही है, बड़ी फिल्म थिएटर में अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन ओटीटी पर ऑडियंस बिंज वॉच कल्चर नहीं छोड़ रही। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि अब फ्यूचर हाइब्रिड एंटरटेनमेंट मॉडल का होगा। अब ऑडियंस डिसाइड करती है थिएटर जाना है या ब्लैंकेट लेकर ओटीटी बिंज करना है। तो दोस्तों, ये थी 19 मई 2024 की सबसे फ्रेश ट्रेंडिंग और अलग अलग बॉलीवुड अपडेट्स, जहां ग्लैमर भी है, गॉसिप भी, रीयूनियन भी और एंटरटेनमेंट का नॉन स्टॉप थरका भी। बने रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात, क्योंकि आगे फिल्मी गपशप में हम लेकर आ रहे हैं अपकमिंग बॉलीवुड रिलीजेस के बारे में और कौन सी फिल्म हिट रही और कौन सी फिल्म फ्लॉप रही। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद। बने रहिए अरुण एफएम 103.1 MHz पर।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। दोस्तों, आने वाले हफ्तों में बॉलीवुड लेकर आ रहा है एक्शन, रोमांस, हॉरर और कॉमेडी का फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज। तो चलिए जानते हैं आने वाली भरी बॉलीवुड फिल्मों के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ। सबसे पहला है चांद मेरा दिल। ये फिल्म रिलीज होगा 22 मई 2026 को। स्टार्स हैं अनन्या पांडे और लक्ष्य। स्टोरी एक इमोशनल म्यूजिकल लव स्टोरी है जहां प्यार, हार्ट ब्रेक और ड्रीम्स का इमोशनल जर्नी देखने को मिलेगा। यूथ ऑडियंस भी काफी एक्साइटमेंट है और सॉन्ग्स और विजुअल्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये फिल्म प्यार करने वालों की प्लेलिस्ट बनने वाली है। अगला है जवानी तो इश्क होना है। ये 22 मई को रिलीज होगा। स्टार्स है वरुण धवन, पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर। स्टोरी है एक क्रेजी रोमांटिक कॉमेडी जिसमें दोस्ती, प्यार और मिसअंडरस्टैंडिंग का फन राइड देखने को मिलेगा। क्यों चर्चा में है वरुण का एनर्जेटिक कॉमिक अवतार, कलरफुल सॉन्ग्स, फुल फैमिली एंटरटेनमेंट वाइब। तो कॉमेडी, रोमांस और मैडनेस सब कुछ मिलेगा एक ही टिकट में। अगला है बंदर। ये 5 जून को रिलीज होगा। स्टार्स है बॉबी देओल, सावाजात। डायरेक्टर है अनुराग कश्यप। स्टोरी एक डार्क क्राइम थ्रिलर जो पावर, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल डेंजरस गेम पर बेस्ड है। इंटेंस टीजर की काफी चर्चा है। बॉबी देओल का रग्ड लुक वायरल है। यह फिल्म मास नहीं, प्योर रोज सिनेमा लवर्स के लिए है। दोस्तों, फिलहाल सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म बैटल ऑफ गलवान से।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप, और हम बात कर रहे हैं आने वाले वीकेंड्स पर रिलीज होने वाले फिल्मों के बारे में। तो अगला फिल्म है मैं वापस आऊंगा, ये रिलीज होगा 12 जून को। स्टार्स हैं दिलजीत दोसांझ, सरवारी वाग और नसरुद्दीन शाह। स्टोरी एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जिसमें म्यूजिक और मेमोरीज का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया जाएगा। क्यों एक्साइटेड है फैंस? इम्तियाज अली स्टाइल इमोशनल स्टोरी टेलिंग वाइब्स हैं, दिलजीत का सोलफुल परफॉर्मेंस। ये फिल्म दिल से कनेक्ट करेगी, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देगी। अगला है कॉकटेल 2, ये 19 जून को रिलीज होगा। स्टार्स है शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना। स्टोरी मॉडर्न रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और हार्ट ब्रेक की स्टाइलिश स्टोरी है। ओरिजिनल कॉकटेल फैंस काफी एक्साइटेड है। ग्लैमरस विजुअल प्लस चार्ट बस्टर म्यूजिक एक्सपेक्टेड की जा रही है। तो लव ट्रायंगल, हार्ट ब्रेक और पार्टी वाइब्स कॉकटेल फिर लौट आया। अगला है वेलकम टू द जंगल, ये 26 जून को रिलीज होगा। स्टार्स है अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी। स्टोरी जंगल एडवेंचर प्लस कंफ्यूजन कॉमेडी प्लस मल्टी स्टार मैडनेस है। बिगेस्ट हाईलाइट है अक्षय कुमार और रवीना टंडन की आइकॉनिक रियूनियन, वन ऑफ द बिगेस्ट असेंबल कास्ट इन बॉलीवुड। वेलकम फ्रेंचाइज इस बार कॉमेडी का जंगल लेकर आ रही है। अगला है फैटी, ये भी जून को ही रिलीज होगा। स्टार्स रामचरण और जानवी कपूर। स्टोरी एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा जहां एक रेसलर की इंस्पायरिंग जर्नी दिखाई जाएगी। ट्रेलर ऑलरेडी वायरल है, रामचरण की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चर्चा में है। तो स्पोर्ट्स ड्रामा प्लस मास एक्शन और बन जाते हैं साउथ और बॉलीवुड फैंस दोनों ही एक्साइटेड। तो दोस्तों, ये था कुछ अपकमिंग बॉलीवुड फिल्मों के बारे में जानकारी। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम में अगला म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं 80 फिल्म का ये बेहद ही प्यारा गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। बॉलीवुड की तरह इंडियन टेलीविजन वर्ल्ड भी इस वक्त फुल ऑन ड्रामा, इमोशन, कंट्रोवर्सीज और शॉकिंग गॉसिप चल रहा है। तो चलिए जानते हैं छोटे पर्दे की दुनिया की सबसे ताजा और ट्रेंडिंग अपडेट्स। मौनी रॉय और सूरज नामियार की सेपरेशन रूमर्स फिर वायरल। दोस्तों, टीवी और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा मौनी रॉय की पर्सनल लाइफ को लेकर हो रही है। पिछले कुछ दिनों से उनके और हस्बैंड सूरज नामियार के सेपरेशन रूमर्स ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनफॉलो और क्रिप्टिक पोस्ट को लेकर फैंस

थ्योरीज बना रहे हैं। लेकिन अब सूरज ने इन फिडलिटी और एलिमोनी रूमर्स को कम्प्लीटली डिसमिस कर दिया है। टीवी वर्ल्ड में रूमर्स लाइटनिंग स्पीड से फैलते हैं सर, लेकिन सच्चाई अक्सर बाद में सामने आती है। नागिन सेवन फिर कंट्रोवर्सी में। दोस्तों, एकता कपूर का हिट फैंटेसी शो नागिन सेवन इस वक्त सोशल मीडिया पर को ट्रेंड कर रहा है। हाल ही में शो के VFX को लेकर मीम्स और ट्रोलिंग शुरू हो गई। इंटरनेट यूजर्स ने कुछ सीन्स को ओवर ड्रामेटिक CGI बताया, लेकिन एकता कपूर ने अपने एडिटर का सपोर्ट करते हुए मजेदार रिएक्शन दिया। नागिन हो और ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। शेखर सुमन ने कॉमेडी मॉडर्न कॉमेडी पर उठाए सवाल। वेटरन एक्टर शेखर सुमन ने आज के स्टैंड अप कॉमेडी सीन पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। उनका कहना है, अब्यूसिव लैंग्वेज और वल्गर जोक्स अब ज्यादा बढ़ गए हैं और क्लीन कॉमेडी को वापस आना चाहिए। कॉमेडी का मकसद हंसाना है, शोक देना नहीं, यही शेखर सुमन का कहना है। हिना खान का फैमिली पोस्ट हुआ वायरल। दोस्तों, हिना खान ने अपने सिस्टर इन लॉ के लिए एक प्यारा पोस्ट शेयर किया जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। उन्होंने होममेड फूड और फैमिली बॉन्डिंग की फोटो शेयर की। फैंस ने इसे होलसम टीवी स्लैब मोमेंट बताया। MTV स्प्लिट्स विला X6 फिनाले ने मचाया बज। स्प्लिट्स विला X6 का फिनाले सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। विनर्स गुल्लू और कियारा वले। ऑडियंस को इस सीजन का प्यार या पैसा ट्विस्ट काफी पसंद आया। तो रियलिटी शो में प्यार भी गेम है और गेम भी प्यार है। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

दोस्तों, अब टीवी इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स की एंट्री तेजी से बढ़ रही है। कई डिजिटल क्रिएटर्स अब रियलिटी शोज साइन कर रहे हैं। ऑडियंस भी फैमिलियर इंटरनेट फेसेस को टीवी पर पसंद कर रही है। विशेषकर अनुराग दोभाल यानी UK07 राइडर के स्टेटमेंट काफी ट्रेंड कर रही है। अब फेम सिर्फ टीवी से नहीं, मोबाइल स्क्रीन से भी मिल रहा है। न्यू रियलिटी शो का नया दौर। इस साल कई नए रियलिटी फॉर्मेट काफी चर्चा में हैं, जैसे द 50 सर्वाइवल रियलिटी ड्रामा, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया होस्टेड बाय अक्षय कुमार। इन शोज ने ट्रेडिशनल टीवी ऑडियंस में प्रेस एक्साइटमेंट क्रिएट किया है। तो इंडियन टीवी अब सिर्फ सास बहू तक सीमित नहीं, अब हर जेनर का गेम शुरू हो चुका है। टीवी स्टार्स का ओटीटी की तरफ बड़ा शिफ्ट। कई पॉपुलर टेलीविजन एक्टर्स अब ओटीटी प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं। वजह स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर्स और एक्सपेरिमेंटल स्टोरी टेलिंग। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि टीवी और ओटीटी के बीच की लाइन अब धीरे धीरे ब्लर हो रही है। नॉस्टैल्जिया शोज फिर लौट रही है। दोस्तों, पुरानी आइकॉनिक टीवी शोज के रिबूट और सीक्वल्स की प्लानिंग चल रही है। ऑडियंस नॉस्टैल्जिक कंटेंट को काफी सपोर्ट कर रही है। मेकर्स पुराने कैरेक्टर्स और क्लासिक टीम्स वापस ला रहे हैं। तो पुरानी यादें नए अंदाज में लौट रही है। तो दोस्तों, ये थे इंडियन टेलीविजन वर्ल्ड की सबसे ताजा गॉसिप, कंट्रोवर्सीज और एंटरटेनमेंट अपडेट्स, जहां इमोशंस भी है, ड्रामा भी और टीआरपी की नॉनस्टॉप रेस भी। तो दोस्तों, आज की फिल्मी गपशप में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, द केरला स्टोरी टू से।

0: तो दोस्तों इसी के साथ आज की फिल्मी गपशप कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद हम लौटेंगे रेडियो ऑन डिमांड के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और

0: नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Nina Arkell. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion and the consequent creation of 1 million jobs in India.
1: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है।
2: On the second day of his visit to Norway, Prime Minister Modi, along with his counterparts from five Nordic countries, will attend the third India-Nordic summit in Oslo today. The summit will build upon the

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे कारगे और एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट म्यूजिकल शो रेडियो ऑन डिमांड। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्रोग्राम है जहां आपके टेक्स्ट मैसेजेस और आपकी पसंद के गाने बन जाते हैं हमारे शो की जान। आप बस भेजिए हमें एसएमएस के जरिए अपना नाम, अपनी जगह, गाने का नाम, फिल्म या सिंगर का नाम और अगर चाहे तो किसी खास के लिए डेडिकेशन भी, और फिर हम बजाएंगे आपके फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग सीधा ऑन एयर सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो दोस्तों रेडी हो जाइए म्यूजिक, इमोशंस और यादों के इस खूबसूरत सफर के लिए। तो दोस्तों वक्त हो चुका है आज के पहले मैसेज का। ये मैसेज भेजा है आरब जी ने। आरब जी, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका दिल से स्वागत है। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही इमोशनल, देशभक्ति से भरा और दिल को छू लेने वाला गीत संदेशे आते हैं फिल्म बॉर्डर टू से। दोस्तों ये गाना सिर्फ एक मेलोडी नहीं बल्कि हर उस जवान के जज्बात की आवाज है जो देश की हिफाजत के लिए सरहद पर खड़ा है। तो अरब जी, आपकी इस ब्यूटीफुल रिक्वेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अरब जी, कल के प्रोग्राम में भी आपने इस गीत को फरमाइश की थी, शायद ये आपका फेवरेट गीत है। तो कोई नहीं, आपकी रिक्वेस्ट ही हमारे प्लेलिस्ट है। तो चलिए आरब जी के रिक्वेस्ट पर आज का रेडियो डिमांड कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनते हैं फिल्म बॉर्डर टू से।

हमें मिल गया है और आपकी फरमाइश भी बिल्कुल दिल तक पहुंच गई है। बस अगली बार अपना नाम और पता जरूर लिख भेजे। आपने हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है आफरी आफरी गीत को सुनने का। दोस्तों ये वो गाना है जो अपनी सूफी अंदाज और खूबसूरत लिरिक्स के साथ सीधे दिल को छू लेता है।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड, आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। और दोस्तों, अब आया है एक और खूबसूरत मैसेज। ये मैसेज भेजा है गिरन टेरोन जी ने दोलोमारा कर्ब अंगलोंग से। गिरन जी, अरुण FM 103.1 MHz पर आपको दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही वर्ग्रीन, सोलफुल और टाइमलेस क्लासिक, आपकी नजरों ने समझा, फिल्म अनपर से। दोस्तों, ये गाना अपनी सिंप्लिसिटी, मेलोडी और इमोशंस के लिए आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। तो गिरन टेरोन जी, आपकी इस ब्यूटीफुल क्लासिक चॉइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, अब महसूस कीजिए इस टाइमलेस मेलोडी का जादू।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड में। दोस्तों आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर है 9436887808। आप इस नंबर पर अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। और दोस्तों एक जरूरी सलाह, आप एक प्रोग्राम में एक ही रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। आप एक से ज्यादा रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम नहीं ले पाएंगे। और दोस्तों अब वक्त हो चुका है एक प्यारा सा मैसेज का। ये मैसेज भेजा है गुम्मे माई बागरा ने, हिगे बागरा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से। गुम्मे जी, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपको प्यार भरा नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला मेलोडी, कैसा तेरा प्यार फिल्म लव स्टोरी से। और दोस्तों ये गाना डेडिकेट किया है तर्मिन रीमे को। तो गुम्मे माई बागरा जी, आपकी इस लवली रिक्वेस्ट और स्वीट डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ तर्मिन रीमे भी इस वक्त हमारे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। चलिए दोस्तों अब एंजॉय कीजिए प्यार और यादों से भरा ये खूबसूरत गाना।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और दोस्तों, अब आ गया है एक और प्यारा सा मैसेज और हमारे रेगुलर लिसनर्स भेजा है, दुर्गेश नागिनपुरे, राधेश्याम नागिनपुरे, वंदना बावना, बिंदु गोलू, कुसुमबाई बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ने, ग्राम जसवादी, डिस्ट्रिक्ट खंडवा, मध्य प्रदेश से। आप सभी को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही रोमांटिक और सूटिंग मेलोडी सातिया फिल्म सिंगम से। दोस्तों, ये गाना प्यार के एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है। तो दुर्गेश जी और पूरे नागिनपुरे फैमिली, आपके इस लवली रिक्वेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, अब एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक को।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। और दोस्तों, अब बारी है एक और मस्ती भरे मैसेज की। ये मैसेज भेजा है हितेंद्र दास जी ने असम से। हितेंद्र जी, अरुण FM 103.1 MHz पर आपको दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक फन फिल्म और एनर्जेटिक गाना बंकू भैया फिल्म भूतनाथ से। दोस्तों, ये गाना बच्चों की मस्ती, फन और इनोसेंस से भरा हुआ है और सुनते ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो हितेंद्र दास जी, आपके इस जबरदस्त रिक्वेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड पर। और दोस्तों, अब आया है एक और खूबसूरत मैसेज, और ये आज के हमारे रेडियो ऑन डिमांड का अंतिम मैसेज है। और ये मैसेज हमें आया है विराज नोरा जी की तरफ से, जोनाई आसाम से। विराज जी, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपको प्यार भरा नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही नजाकत भरा, सोलफुल और एवरग्रीन क्लासिक दिल चीज क्या है फिल्म उमराव जान से। दोस्तों, ये गाना अपनी शायरी, अदा और मेलोडी के लिए आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। तो विराज जी, आपकी इस क्लासी और ब्यूटीफुल चॉइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, आप महसूस कीजिए इस टाइमलेस मेलोडी का जादू।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज की पहली प्रसारण सभा के समापन पर आप पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ते थांगजांग तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रामा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण FM 103.1 MHz पर। और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आपके अपने आरजे बामिन सुम्पी जी। और अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी कारगर रिबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।
2: तेरे दिल का मेरे दिल से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार तथा अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
5: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
3: प्रधानमंत्री

0: मोदी को नॉर्वे के राजा हेरल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग पर आधारित मजबूत संबंध साझा करते हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला न करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रुजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुरमुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 से अधिक अंक की वृद्धि के साथ 75,706 पर, जबकि निफ्टी 107 अंक बढ़कर 23,760 पर था। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 MHz पर। श्रोताओ, इससे पहले आप सुन रहे थे हमारे पहले ट्रांसमिशन को आरजे कारगे के साथ, और अब हमारे सेकंड ट्रांसमिशन के लिए मैं आपकी रेडियो साथी बामिन सुम्पी आपके साथ रहूंगी अब से लेकर शाम के 4:20 तक, और आपको मनोरंजन करवाऊंगी ढेर सारे कार्यक्रमों के साथ। तो चलिए श्रोताओं, शुरू करते हैं हमारे इस सभा के पहले कार्यक्रम को, यानी कि फिल्मी लहर को, और आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिर मिले हैं, और आपको ये भी बता दूं कि हमारे इस ट्रांसमिशन के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक एल ताली और तकनीकी अभियंता टिम टिम। श्रोताओं, आज दिन बड़ा अच्छा है, खिली खिली धूप है, हर जगह पेड़ पौधे फूल खिले खिले लग रहे हैं, तो आइए इसी बात पे आपको खिलखिलाते गाने भी सुनवाते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम फिल्मी लहर और आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए श्रोता, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है पाश्चात्य गीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज़।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और

0: क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
1: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. We have more from our correspondent.
3: This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc currently stands at $19 billion. This summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region. It will also provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of this summit. Sangeeta Godbole, Akashwani News, Oslo.
2: Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement. The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at this moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of global uncertainty, energy insecurity and economic divisions, the world must choose between working alone or strengthening international partnerships. In the article, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. They emphasized that at the same time, the need to reform global governance institutions to reflect contemporary realities has become impossible to ignore. The Supreme Court today refused to recall its earlier directions that stray dogs picked up from public places must not be released back after vaccination or sterilization. A bench headed by Justice Vikram Nath dismissed pleas seeking modification of the November 2025 order and directed authorities to confine such dogs to shelters. The court cited deeply disturbing incidents of dog attacks on children, elderly persons and travellers and said the menace had reached critical public areas. Petrol and diesel prices have been hiked by around 90 paise per litre today, marking the second increase in less than a week. In Delhi, petrol now costs 98 rupees 64 paise per litre, while diesel is priced at 91 rupees 58 paise. The latest hike comes days after a 3 rupee per litre increase on May the 15th, the first fuel price revision in over 4 years. The rise follows a sharp surge in global crude oil prices amid the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Defence Minister Rajnath Singh has called on President of Vietnam Tho Lam in Hanoi and reaffirmed India's commitment to further deepen defence cooperation between the two countries. The Defence Minister said in a social media post that cooperation is a key pillar of the enhanced comprehensive strategic partnership between the two countries. He said India and Vietnam share a strong bond rooted in mutual trust, shared values and close cooperation in defence, security and regional stability. Mr. Singh also held a bilateral meeting with his Vietnamese counterpart, General Phan Van Chiang. In IPL cricket today, Rajasthan Royals will take on Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.A. Chidambaram Stadium. And with that, we end this news bulletin.
4: श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और आप हमें सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्यारी श्रोताओं, आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत गजलों को हमारे कार्यक्रम गजल में। और इस कार्यक्रम में पहला गजल आप सुनेंगे शाहिनशाह ए गजल मेहदी हसन की आवाज में। उनका ये गजल जो है ये एक टूटे हुए दिल की दास्तां है और बेपना मोहब्बत की गहराई को बयां करती है। उनके सबसे लोकप्रिय गजल मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो।

श्रोताओं, मेहदी हसन को यूं ही लोग एम्परर ऑफ गजल नहीं कहते हैं। उनके नाम पर तो कई सारे यादगार गजल हैं जिन्हें लोग आज भी बड़े शौक से याद करते हैं। उनमें से एक और ऐसी ही गजल है, रंजिश ही सही, और इस गजल को आप सुनेंगे रूना लैला के।

श्रोता अगला गजल जो आप सुनेंगे वो है ये टाइमलेस गजल, जिसे ना जाने कितने आर्टिस्ट ने कितनी बार कवर किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये गजल फरीदा खानम की आवाज में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में। चलिए श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम है आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक इंटरव्यू तेंगम सलीन कोयू के साथ, और इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं गोपाल राय।
1: नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर के 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त, आपकी पसंदीदा कार्यक्रम आज के मेहमान के साथ। और श्रोताओं, आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। शी इज द वन हु वाज रिसेंटली क्राउन्ड मिस अरुणाचल 2021। प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग द वेरी ब्यूटिफुल एंड टैलेंटेड तेंगम सलीन कोयू।
2: थैंक यू सो मच
1: तेंगम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अरुण एफएम के स्टूडियो में। तो तेंगम, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताएं, आपके एजुकेशन, आप कहाँ से हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत जरूरी बात कहना भूल गई, और वो है बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ढेर सारी बधाई आपको हमारे ऑल इंडिया रेडियो के परिवार की तरफ से। तो प्लीज हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपकी पढ़ाई किस तरह से की आपने।
2: मैं एक्चुअली पासीघाट से हूँ। मेरा जन्म हुआ था सेप्पा में, मेरी मॉम सेप्पा की है, लेकिन माई डैड इज फ्रॉम पासीघाट, ही इज अ गालो पर्सन। सो हाँ, तो मेरा मम्मी निशी है, पापा गालो है, एंड एकदम आदि कम्युनिटी के बीच में ब्रॉटअप हुई हूँ मैं। एंड देन मेरा एजुकेशन भी पासीघाट में हुआ है टिल आई थिंक आई वॉज क्लास 8। मेरा एजुकेशन वहाँ हुआ था SFS स्कूल में। एंड देन उसके बाद में आई वेंट टू शिलोंग फॉर माई हायर स्टडीज क्लास 9-10। उसके बाद में 11-12 ईटानगर में हुआ, एंड देन कॉलेज अगेन शिलोंग में हुआ, सेंट डोमिनिक्स कॉलेज में। वहां पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एंड देन उसके बाद आरजीयू में मेरा सिलेक्शन हो गया एंट्रेंस एग्जाम में। सो आई एम डूइंग माय मास्टर्स देयर नाउ इन सोशियोलॉजी।
1: तो फिर जो ये मिस अरुणाचल बनने की जो इच्छा है, ये कब से बनी? व्हाट मेड यू वांट टू बिकम मिस अरुणाचल?
2: जब मैं छोटी सी थी तब एकदम मेरा जो बिहेवियर जो था वो लड़कों की तरह था। आई यूज टू बी अ टॉम बॉय एंड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल विद माई ब्रदर्स एंड ऑल। आई हैव 3 ब्रदर्स एक्चुअली, 3 यंगर ब्रदर्स। सो या उन लोग के साथ में खेल कूद होता था, तो बहुत ऐसा इन्वायरमेंट था कि मेरा बहुत एक टॉम बॉयश नेचर एक बिल्डअप हो गया मेरा। लेकिन जैसे ही मैं बड़ी होती गई, क्लास 11 12 में जब आया, तब यू नो बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस ये सब होने चेंजेस, तो आई डेवलप सम काइंड ऑफ फेमिनिन नेचर इनसाइड मी। तो उसके बाद में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ ब्यूटी पैजेंट में। तो वहां से मैंने अपना जर्नी शुरू किया, पैजेंट का जर्नी। तो फर्स्ट आई पार्टिसिपेटेड इन मेगा मिस नॉर्थईस्ट 2016, वो मेरा पहला था।
1: हाँ, तब तो बहुत शायद बहुत छोटी थी।
2: हाँ, आई वॉज 17.5, ऑलमोस्ट 18 देन।
1: ओके,
2: अभी मैं 23 ईयर्स की हूँ। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी।
1: तो इन दोनों के अलावा और किस किस तरह के ब्यूटी पेजेस में आपने पार्टिसिपेट किया?
2: हाँ, 2016 में मेगा मिस नॉर्थईस्ट बाद में मैंने ये मेगा अल्ट्रा फेस्टिवल, शिलोंग का एक फेस्टिवल होता है फॉर अरुणाचल कम्युनिटी, तो वहां पे मेरा जो पेजेंट का जर्नी था, लाइक उसके बाद में इट स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट। तो MATF में आई वाज द विनर 2016 में। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि अभी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, अभी थोड़ा ये सब को थोड़ा आई पुट इट असाइड एंड देन पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान देके। सो उसके बाद में इवेंचुअली आई मेड अ वेरी ग्रेट डिसीजन, क्योंकि मैंने कॉलेज में टॉप किया था तब।
1: ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस अगेन,
2: थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद में 2019 में फिर से आई केम बैक टू पेजेंट्री। फिर ये हम लोग के जो यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, वहाँ ये एक कॉन्टेस्ट होता है यूनिफेस्ट।
1: जी हाँ, हर साल किया जाता है यूनिफेस्ट।
2: तो वहाँ पे आई वॉज द विनर।
1: ओके,
2: तो उसके बाद में 2020 को फिर मैंने पार्टिसिपेट किया था मिस अरुणाचल में, 2020 मिस अरुणाचल का। तो वहां पे तो जीत नहीं पाई, बट आई वॉज इन टॉप 5। और फिर एक सब टाइटल भी मिला था मिस ब्यूटिफुल स्माइल का। एंड देन उसके बाद फिर दिस ईयर 2021 फिर मैं विनर बन गई मिस अरुणाचल 2021।
1: मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे, बिकॉज लास्ट ईयर भी आई वॉज डेफिनेटली रूटिंग फॉर यू, इवन लास्ट ईयर
2: यू
1: मेड इट इन टॉप 5। लेकिन ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि लोग एक बार ट्राई करने के बाद जस्ट गिव अप। तो व्हाट मेड यू डिसाइड कि लाइक टॉप 5 में पहुंचने के बावजूद यू डिसाइडेड अगेन कि आप फिर से ये साल पार्टिसिपेट करेंगे?
2: आई थिंक दैट मेरे अंदर एक रह गया था कि हाँ कुछ खामियां हैं जिसको पूरी करनी है. आई न्यू कि आई डोंट हैव द बेस्ट बॉडी, आई स्टिल डोंट हैव द बेस्ट बॉडी, बट आई न्यू दैट देयर इज सो मच दैट आई कैन इम्प्रूव. बहुत सारा है इम्प्रूवमेंट का जगह में. तो मुझे पता था कि मैं क्या लैक कर रही हूँ तब समय. तो आई मेड अ डिसीजन की 2021 नो मैटर व्हाट, इफ आई विन और लूज आई वांट टू हैव दैट सेटिस्फेक्शन इन माई सेल्फ की हाँ मैंने अपने खुद को इम्प्रूव किया है. जितना जो भी चीज लैक हो रहा था उसको एकदम चेंज करके मैंने वापस आया. तो वो चीज को दिल में रखते हुए आई गेव इट अ शॉट एंड बाय गॉड्स ग्रेस बाय गुड लक एंड बिकॉज ऑफ माय हार्ड वर्क.
1: एग्जैक्टली, इट्स डेफिनेटली बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क.
2: थैंक यू सो मच.
1: तो देखो जैसे आप कह रहे थे कि जो आप फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बोल रहे थे, तो जब यूजली ब्यूटी कॉन्टेस्ट कंटेस्टेंट को क्या कहा जाता है, दे आर मोस्टली डिस्क्राइब एज ब्यूटी विद ब्रेन्स.
2: यस.
1: तो जब हम ब्यूटी पेजेंट के बारे में बात करते हैं, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू लुक ब्यूटिफुल over your personality in a beauty pageant contest. Is looking beautiful more important or having an amazing personality more important?
2: See, I think it's neither of those. क्योंकि जो हर रोज स्टेज में होता है वो it's different grooming sessions में ना.
1: जी.
2: It's different. So you might not have the best body and I don't have the best body. I don't have the best walk. I know. I don't even
1: You're just
2: have
1: being
2: the most
1: very humble.
2: it's true. मेरा talking जो style है, even my talking skills, it's not that good. I understand that and there is a lot of improvement, space of improvement for me. But something that I do know that I don't have any bitterness in my heart. मैं किसी के बारे कुछ बुरा नहीं सोचती. और वो सबसे important चीज है कि आप सब लोगों के सामने में अपने खुद को कैसे present करो.
1: Exactly.
2: That is the most important thing. आप पीपल आदमी लोग के साथ में अपने जनता के साथ में आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी ग्राउंडेड, यू शुड बी डाउन टू अर्थ. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट.
1: एग्जैक्टली. सो एज पर यू, अदर देन बीइंग हैविंग दिस ब्यूटिफुल हार्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ दैट मेड यू विन मिस अरुणाचल का टाइटल दिस टाइम?
2: आई थिंक इट्स
1: व्हाट इज इट दैट यू इम्प्रूव्ड ओवर लास्ट ईयर.
2: See, okay, coming clean, honestly speaking, so last year, mera jo weight tha, wo bahut kam tha. I was underweight. Okay. I was only 44 kg then. Mera weight bahut kam tha. And then I was not even confident with my talking style. Main thoda low bolti thi, thoda soft voice tha mera. So I knew that. Mujhe pata hai, aise, main bilkul nahi keh rahi hu ki, jo स्किनी लड़की है या फिर जो एकदम हेल्दी लड़कियां है उन लोगों के अंदर कुछ कमी है. बट इनसाइड मी आई न्यू ना कि अंडरवेट है तो कहीं ना कहीं वो तो हेल्थ का इश्यूज तो थोड़ा बनता है, तो उसको तो इम्प्रूव करना ही होगा. देयर आई न्यू. तो आई वर्क ऑन माई सेल्फ एक साल तक जैसे तैसे करके आई इम्प्रूव माई हेल्थ. फिर उसके बाद में नाउ आई एम ऑलमोस्ट 54 kgs. इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ है मेरा. एंड देन इवन द वे आई टॉक उसको भी बहुत पॉलिशिंग किया. मुझे पता था कि मेरा वॉइस थोड़ा लो है तो उसपे भी काम किया बहुत.
1: यू वर्क ऑन थिंग्स जो आपको लगा कि आपने कमी है. आई थिंक आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा था कि बिगेस्ट कमी जो सबसे बड़ी कमी आप में थी, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस की.
2: यस यस.
1: सो दिस ईयर आई थिंक यू वर प्रिपेयर्ड एंड यू केम बैक विद कॉन्फिडेंस. एंड देयर गोज दिस सेइंग कि कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सेसरी ए वुमन कैन वेयर. एंड आई थिंक दिस इज द कॉन्फिडेंस जिसने आपको ये ताज दिलवाया.
2: थैंक यू सो मच.
1: तेंगम, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो मिस अरुणाचल का जर्नी था वो कैसा.

0: आपको हर किसी का तो शायद एक साल का जर्नी होगा, आपका शायद दो साल का जर्नी था. सो हाउ वाज दैट?
1: सो मिस अरुणाचल 2020 उसमें आई टेल यू आई स्पेंट ओनली 7 days विद दोस गर्ल्स. सिर्फ 7 days का था लेकिन जो बॉन्डिंग उसमें बनाया ना, दैट सिस्टरहुड, आई हैव नेवर फेल्ट सच सिस्टरहुड इन माय होल लाइफ. बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड देन जो 2021 का था, इट्स मोर लाइक कम्पिटिटिवनेस ज्यादा था.
0: ओके.
1: कॉम्पिटिशन ज्यादा था. आई कुड सी इट इन देयर आईज ना, कि सब लोग के अंदर में वो भूख थी कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है. लेकिन 2021 में वी वर लाइक कोई भी जीतो विल बी हैप्पी. वी वर लाइक दैट. सो जो भी रिजल्ट है 2020 का, वी वर वेरी हैप्पी विद दैट. टॉप मैम, शी इज अ ग्रेट गर्ल.
0: इतने सारे अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट थे, आई वॉज लाइक किसको सपोर्ट करूं.
1: सो दैट एटमोस्फियर थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन दोनों से सीखने को तो बहुत ज्यादा मिला. अलग अलग एटमोस्फियर था, लेकिन जैसे खुद को एडजस्ट करना है उस एटमोस्फियर में, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट.
0: अलग अलग तरह के एनवायरमेंट में आपको अलग अलग चीज सीखने को मिली. सो आउट ऑफ दिस, विच वॉज योर फेवरेट पार्ट?
1: Probably interacting with the girls. मैंने बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए दोनों सीजन्स में. बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए. एंड आई एम सो ग्लैड कि उन सब से मेरा मुलाकात हुआ बात करने को. एंड आई स्टिल टॉक टू सो मेनी गर्ल्स ना, लाइक इवन 12 AM को सुबह सुबह 1 AM को कॉल करके, अरे बताओ क्या कर रहे हैं, बातचीत होते रहता है.
0: तो तेंगा, अभी हम आगे बढ़ते हैं. तो आई थिंक बहुतों को नहीं पता है, शायद अभी आप लाइफ में है तो शायद लोगों को पता चल रहा है कि आप सोशल वर्क जॉब कर रही है एज मिस अरुणाचल. तो अभी लोगों को अभी दिख रहा है, लेकिन आप शायद मिस अरुणाचल बनने से पहले भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी. तो आप क्या हमारे लिसनर्स को बता सकते हैं कि क्या क्या किया आपने मिस अरुणाचल बनने से पहले?
1: मैंने तो किया है थोड़ा, नहीं किया बट हाँ, पहले से मेरा बहुत मन में एक था कि सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ करना है. देट वॉज ऑलवेज इन माई माइंड, इन माई हार्ट. तो मैंने जब कॉलेज में थी तब तो मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी. आई वॉज यू नो आई वॉज लाइक अ बर्ड देन. आई कुड फ्लाई. मतलब जब हाई स्कूल में होता है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है पेरेंट्स, राइट? लेकिन कॉलेज में होते समय आई वॉज अ फ्री बर्ड. आई कुड डू एनीथिंग दैट आई विश टू. एंड मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि चलो अभी कॉलेज है ना, यू कंसेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, यू कंसेंट्रेट ऑन सोशल वर्क इफ यू आर इंटरेस्टेड. सो उसके बाद में मैंने NSS ज्वाइन किया.
0: ओके.
1: 2016 में मैंने NSS ज्वाइन किया. तो ओवर द 3 years दैट आई स्पेंड इन माई कॉलेज, उसमें मैंने बहुत सारा ऑल एज होम्स में, उसके बाद में ऑर्फनेजेस में, क्लीनलीनेस ड्राइव, ये सब में बहुत सारा पार्टिसिपेट किया. एंड देन आई वॉज इवन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट मेघालय इन रिपब्लिक डे परेड 2019. इट इज माई मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई कैन नॉट इवन फॉरगेट इट. बहुत अच्छा लगा था.
0: तो तेंगम, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि आप जो सोशल सर्विस का वर्क तो पहले से ही इन्वॉल्व थे, अभी भी कर रहे हैं. जो पहले जो कर रही थी आप अभी भी वही काम कर रही हो. इट्स जस्ट दैट कि लोग अभी उसे देख रहे हैं, जान रहे हैं. तो आफ्टर बिकमिंग मिस अरुणाचल, हैज योर लाइफ चेंज्ड? आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस?
1: डेफिनेटली आई थिंक एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस, राइट?
0: एग्जैक्टली.
1: तो बहुत सारा मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसके बाद में ये जो भारी जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा मिला. एंड उसके साथ साथ जो हेक्टिक स्केड्यूल है एज मिस अरुणाचल 2021, बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसके जो यूथ अफेयर्स है उसके साथ में हम लोग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year हम लोग काम करते थे. तो उसके अंदर में जितना भी सोशल कॉसेस है, कैंपेन्स है, तो उनके साथ में काम करना होता है. सो दे आर लाइक सो मेनी थिंग्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड अभी भी मेरा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है. सो हाँ, वो सब है थोड़ा सा, लेकिन यू नो इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव टू टेक दैट फॉर अ ईयर. जैसे भी हो, कैसे भी हो, करना तो पड़ेगा. ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी तो सब लोग मेरे ऊपर, नजरे तो मेरे ऊपर है. एवरी वन लुक अप टू मी. इवन यंग गर्ल्स, छोटे छोटे लड़कियां, वो लोग कहते हैं कि दी आप हमें बहुत इंस्पायर करते. सो आई वॉन्ट टू टेल दम कि देखिए, इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक. मिस अरुणाचल 2021 छोटी सी बात नहीं है. रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है. अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा करना होगा.
0: तो तेंगम, दिस इज एक, मैं ये हमेशा से जानना चाहती थी कि यू एज समन हु हैज वोन द क्राउन, हु इज वेयरिंग द क्राउन एंड हु इज कैरिंग अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो प्रीवियस सीजन के जो मिस अरुणाचल है और अभी के जो मिस अरुणाचल है, इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है?
1: डिफरेंस आई थिंक इतना तो डिफरेंस नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि कितना मुश्किल है वो क्राउन जीतना. उसके लिए हार्ड वर्क करना, मेरे साइड से तो बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरा तो सेकेंड अटेम्प्ट है
0: जी हाँ, जी हाँ.
1: तो मुश्किल तो बहुत है, डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है. लेकिन सिर्फ एक बात ये है कि एक्सपोजर हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि ब्यूटी पेजेंट्स लोग सिंस आई थिंक लीचा तोसुम सिंस वो रिप्रेजेंट किया था अरुणाचल को इस फेमिना मिस इंडिया में, उसके बाद में अटेंशन बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो गया. उससे पहले इतना नहीं था. तो जब से आई थिंक शी इज लाइक अ स्टोन बैरियर
0: एग्जैक्टली
1: तो वहाँ पे उसके बाद से ब्यूटी पेजेंट्स मिस अरुणाचल मिस नेफा जो होते आए हैं सब लोग को बहुत सारा अटेंशन मिलने के लिए शुरू हो गया. एंड आई एम रियली ग्लैड कि बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज को एनकरेज करते हैं, ब्यूटी पेजेंट्स को एनकरेज करते हैं. बट हाँ कोई कोई है डिस्करेज करने वाले भी, बोलने वाले भी. बट
0: उनसे आप क्या कहेंगे जो ब्यूटी पेजेंट को कहते हैं कि ब्यूटी पेजेंट्स आर ऑफ नो यूज, उन लोगों से आप क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहती हूँ कि आप रजिस्टर करिए खुद को, आप पार्टिसिपेट करिए तब आपको पता लगेगा कितना मुश्किल है. दिस इज नॉट एन इजी टास्क, दिस इज नॉट एन इजी टास्क. बहुत मेहनत करना पड़ता है एंड फाइनेंशियली भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है. दैट्स वन थिंग दैट एवरीवन से ना कि थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाता है ये चीज ना. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम कि अगर आपको ब्यूटी पेजेंट में आना है तो यू शुड बी मेंटली prepared, financially also prepared. Everything like should be on the point.
0: It has to be planned.
1: Yes.
0: Perfectly. It's not just planned. Any random contest. You have to plan out everything.
1: Yes, yes, yes.
0: So, Tingam, abhi aage badhne se pehle, hum sabko pata hai ki you are a very good singer. तो हमारे शो में जो भी मेहमान आते हैं उनको हम एक गाना रिक्वेस्ट करते हैं, सो दैट उनका फेवरेट गाना, सो दैट हमारे जो लिस्टनर्स हैं हम उसे उस गाने को हमारे लिस्टनर्स के लिए प्ले करें. तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने फेवरेट गाने का नाम ले और उस गाने का नाम आप गाते हुए ले.
1: एक्चुअली मेरा सिंगिंग से बहुत पुराना रिश्ता है. लाइक बहुत छोटी सी थी मैं तब से मुझे गाना गाना गिटार बजाना बहुत पसंद था. एंड देन स्पेशली लिसनिंग टू कंट्री सॉन्ग्स, सानिया ट्वाइन तो मेरा एकदम फेवरेट, माय एंड माय फादर.
0: एग्जैक्टली माइन एज़ वेल.
1: सो शी वाज माय फेवरेट, स्टिल इज. सो हर सॉन्ग यू आर स्टिल द वन इज माय फेवरेट.
0: ओह दैट्स ब्यूटीफुल.
1: सो आई विल जस्ट सिंग टू लाइंस.

0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज का मेहमान, और हमारे बीच मौजूद है मिस अरुणाचल 2021 तेंगाम सलीन कोयू।
1: थैंक यू।
0: तो तेंगाम, आपने कहा कि मिस अरुणाचल में पार्टिसिपेट करने से पहले आपने बहुत सारे पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया, तो अरुणाचल में जो ब्यूटी पेजेंट का जो गेम है इट्स प्रीटी न्यू बट आउटसाइड इट्स ह्यूज, तो फिर हाउ कैन वन डिसाइड विच पेजेंट टू पार्टिसिपेट एंड विच पेजेंट नॉट टू?
1: I'll tell the young girls कि अगर आप सोचते हैं कि आपको ब्यूटी पेजेंट में इंटरेस्टेड है, देन फर्स्ट यू गेन एक्सपीरियंस। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, लाइक मिस ईस्ट कमिंग, मिस तावांग, मिस लूना, ये सब होते रहते हैं। तो वहां से अगर आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे तब आपको मिस अरुणाचल में आने के बाद में जो माहौल होगा इट विल बी लाइक थोड़ा एडजस्टेबल रह जाएगा।
0: ओके।
1: हाँ, तो वहां से एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में यू कम टू द बिगर प्लेटफॉर्म, सो इट गोज लाइक दैट। सो इट विल बी बेटर फॉर दोज गर्ल्स ऑल्सो ना, एंड देर आर मेनी ब्यूटी पेजेंट्स जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, कोई कोई है कि नहीं है, लेकिन मिस अरुणाचल इज द ओनली पेजेंट जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है।
0: ओके।
1: सो ये जितना भी आप कह लो कि स्टेट में जितना भी पेजेंट्स है, लेकिन मिस अरुणाचल क्योंकि वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है इसलिए उसका आई थिंक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा।
0: आई गेस हाँ, मतलब इट डजेंट मैटर, अगर आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म जीतना है तो इट डजेंट मैटर कि कौन सा पेजेंट हो, जस्ट गो पार्टिसिपेट, गेन सम एक्सपीरियंस एंड देन कम प्रिपेयर्ड। जैसे आपने कहा कि प्लानिंग बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है
1: जरूरी।
0: तो फिर देंगे हम यू मेंशन कि लाइक इसमें फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली एकदम तैयार रहना पड़ेगा टू द पॉइंट। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारे अरुणाचल में खास करके हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई करें और बस एक अच्छे से सरकारी नौकरी करें। सो यू पार्टिसिपेटेड इन मिस अरुणाचल एंड यू ट्राइड इट ट्वाइस, हाउ सपोर्टिव हैज योर पेरेंट्स बीन?
1: सपोर्टिव तो बिल्कुल नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले तो दे वर नॉट सपोर्टिव क्योंकि उन्होंने लगा कि बिकॉज वो भी एक पेरेंट है तो उन्हें भी दुख लगता है कि अगर अपने बच्चे कुछ चीज में एक 100% कोशिश करने के बाद में हार जाए तो उन्हें बहुत दुख लगता है। हम लोग से ज्यादा उन लोग को दुख लगेगा ऑब्वियसली। सो जब मैंने पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर टॉप 5 में पहुंची थी पर जीत नहीं पाई, तो मुझसे ज्यादा मेरे फैमिली मेंबर ज्यादा दुखते हैं। तो आई फेल रियली सैड बिकॉज आई ऑल्सो डिड माई बेस्ट, आई फेल्ट, बट आई न्यू देयर वर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स। सो उसके बाद में व्हेन आई डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट अगेन इन मिस अरुणाचल 2021, दैट टाइम ऑल्सो मेरे पेरेंट्स एंड देन मेरे फैमिली मेंबर्स दे वर अगेंस्ट इट। पहले तो दे सेड कि अगर ये बार नहीं जीतोगी तो क्या होगा? फिर तुम कहाँ जाओगी? क्या यहाँ खत्म हो जाएगा सब कुछ? देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। पर मैंने उन लोगों को अपना कॉन्फिडेंस दिखाया। मैंने कहा कि नहीं, ये बार तो मैं कर दिखाऊंगी। आप बस एक बार, बस दिस टाइम मेरे ऊपर भरोसा रखे। मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी एंड देन दिस टाइम फॉर श्योर आई थिंक आई कैन मेक इट। आई गिव देम माय एश्योरेंस। तो उसके बाद में मेरा जो विल पावर देखने के बाद में, मेरा नॉट गिविंग अप एटीट्यूड देखने के बाद में, उन लोगों के आंखों में भी आंसू आ गए थोड़े से। लाइक ठीक है, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, क्योंकि बाद में तुमको रिग्रेट नहीं होना है कि तुमने कुछ ट्राई किया था पर नहीं हो पाया। ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में सब लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद में जीतने के बाद तो सबसे ज्यादा हैप्पी तो वो लोग ही थे।
0: तो जी हाँ, मैंने सुना कि पासीघाट में आपका बहुत ग्रैंड रिसेप्शन हुआ है और वहां पे एक बहुत ही फेमस स्लोगन चल रहा था जो आपका जो अभी ये विल

0: पावर की कहानी सुन के मेरे दिमाग में ये बैठ रहा है कि एग्जैक्टली फिट्स द डिस्क्रिप्शन. क्या था वो आप बताएंगे?
1: ये आग नहीं चिंगारी है, ये अरुणाचल की नारी है. अखिल भारतीय विद्या परिषद दे केम टू रिसीव मी पासीघाट के गेट में और उन लोगों ने ये पूरा चैंट किया मेरे घर तक.
0: सो हाउ वाज द रिसेप्शन पासीघाट में पहुंचने के साथ साथ व्हेन यू वंडर
1: इट वाज सो ओवरवेलमिंग. इट वाज सो ओवरवेलमिंग बिकॉज आई नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट इन माय होल लाइफ. मतलब इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे पहले कभी नहीं मिला. आई फेल लाइक दैट. मेरे स्कूल के जो बच्चे थे, इंडियन टीचर्स थे, उन लोग वो लोग आए मुझे रिसीव करने. ए बी के आदि बानक बांग उन लोग ने भी आए. उसके बाद में आई थिंक नेचर्स ट्रस्ट, ये अबोर हिल्स का, वो लोग आए. ए बी वी पी अखिल भारतीय विद्या परिषद सब आए, मुझे एक गाड़ी में बिठाया, फिर लेके गए अपने घर तक. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थिंक पहले मैंने कभी अरुणाचल में नहीं देखा ऐसा रिसेप्शन किसी का होते हुए, क्योंकि बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट विनर्स अपने घर गए लेकिन किसी का ऐसा रिसेप्शन देखा नहीं मैंने. तो पहले तो मैं सरप्राइज हो गई थी एंड देन थोड़ा सा एम्बैरसिंग भी था. बट देन क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग बहुत खुश है और उनकी खुशी की वजह से वो लोग इस तरह उसको जाया कर रहे हैं, मुझे पता लगा. तो आई एक्सेप्टेड दैट.
0: आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि लाइक लोग रिकॉग्नाइज करें कि ब्यूटी पेजेंट में कितना हार्डवर्क रखता है, कितना मेहनत रखता है एंड व्हाट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज. और आई थिंक हमारे लोगों को ये पता भी चल रहा है अभी, वो अवेयरनेस क्रिएट भी हो चुका है थैंक्स टू यू. जैसे आपने कहा लीचा तो सुन, शी एक्चुअली डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ये ब्यूटी पेजेंट को दूसरे लेवल में लेके जाने के लिए. तो अभी हमें, जैसे कि हमारे सब अरुणाचल के लोगों को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, खास करके आपके परिवार वालों को भी आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है. तो व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान?
1: फ्यूचर प्लान तो ये जो मेरा वन ईयर है एज मिस अरुणाचल 2021, आई वांट टू डेडिकेट इट होल हार्टली. अपने पूरी तरह से डेडिकेशन देना चाहती हूँ क्योंकि इस पे बहुत सारा कैंपेन्स आएगा, सोशल कॉसेस होगा जिसपे मुझे प्रेजेंट होना होगा और उसके साथ साथ देयर विल बी एंडोर्समेंट, एडवर्टाइजमेंट. तो सब कुछ को मैं ध्यान देते हुए एक साल अपना पूरा मिस अरुणाचल 2021 को देना चाहती हूँ और फिर बाय साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम मिस इंडिया के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ मैं.
0: ओके.
1: तो आई होप दैट आई गेट सेलेक्टेड एंड देन आई रिप्रेजेंट अरुणाचल. और उसके बाद में आई थिंक आई हैव अ गोल सेट अकॉर्डिंग टू माई एज, दैट्स हाउ आई सेड इट. तो 25 तक पेजेंट और जो पेजेंट्री का जर्नी एंड देन जो सोशल कॉजेस है, आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. और उसके बाद तो मेरा इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज में.
0: ओ ग्रेट, एंड आई एम श्योर यू विल मेक इट ग्रेट सिविल एडमिनिस्ट्रेटर. एंड वी आर ऑल्सो पॉजिटिव कि मिस इंडिया में भी आपका सिलेक्शन जरूर होगा एंड यू विल प्राउडली रिप्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश.
1: थैंक यू सो मच.
0: तो अभी जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को कुछ मैसेज देते हुए जाए.
1: मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारे माहौल जैसा है, बहुत गंभीर है. कोविड की वजह से बहुत सारे लोग एवरी डे बीमारी फैलते जा रहे हैं एंड देन बेड्स का कमी है हॉस्पिटल्स में, वेंटिलेटर्स की कमी है एंड देन हमारे जो इकोनॉमी है वो इसे हैंडल नहीं कर पाएगी. तो प्लीज वेयर योर मास्क एंड स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एज मच एज यू कैन. और अपने जो करीबी लोग हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट कीजिए, उन्हें भी बताइए कि क्या बुरा है और क्या क्या सही है. ये सब चीज को आप लोग ध्यान देते हुए अपने लाइफ में अच्छे से आगे बढ़िए.
0: सो थैंक यू सो मच तेंगम हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए. और मैं भी हमारे लिसनर से कहूंगी कि कोविड का खतरा अभी गया नहीं है हमारे ऊपर से. तो स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और सभी जो सरकार द्वारा जारी किया गया एसओपीस है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसे फॉलो करें आप. सो थैंक यू सो मच तेंगम फॉर ज्वाइनिंग अस और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू.
0: तो इसी के साथ हमारा कार्यक्रम आज का मेहमान यहीं पे समाप्त होता है. हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक और नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए मुझे और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जेबी नाबम को दीजिए इजाजत. नमस्कार, शुभ रात्रि.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement.
4: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein $100 billion इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है. ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है. और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है.
3: India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at a moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of growing geopolitical uncertainty, energy insecurity and economic fragmentation, the world faces a defining choice of either retreating into narrow national approaches or strengthening partnerships. In the article published today in a national daily, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. A high-level meeting of the Central Zonal Council has started at Jagdalpur in Chhattisgarh. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah is chairing the meeting. Chief Ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Chhattisgarh are participating in the 26th meeting of the Central Zonal Council. Union Home Secretary, Director of the Intelligence Bureau, Directors General of Police of the four states, along with senior police and administrative officials, are also attending the meeting. The Supreme Court today refused to recall its earlier directions that stray dogs picked up from public places must not be released back after vaccination or sterilization. A bench headed by Justice Vikram Nath dismissed pleas seeking modification of the November 2025 order and directed authorities to confine such dogs to shelters. The court cited deeply disturbing incidents of dog attacks on children, elderly persons and travellers and said the menace had reached critical public areas including airports and residential colonies. Petrol and diesel prices have been hiked by around 90 paise per litre today, marking the second increase in less than a week. In Delhi, petrol now costs 98 rupees 64 paise per litre, while diesel is priced at 91 rupees 58 paise. The latest hike comes days after a 3 rupee per litre increase on May the 15th, the first fuel price revision in over 4 years. The rise follows a sharp surge in global crude oil prices amid the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Defence Minister Rajnath Singh has called on President of Vietnam Tho Lam in Hanoi and reaffirmed India's commitment to further deepen defence cooperation between the two countries. The Defence Minister said in a social media post that cooperation is a key pillar of the enhanced comprehensive strategic partnership between the two countries. He said India and Vietnam share a strong bond rooted in mutual trust, shared values and close cooperation in defence, security and regional stability. Mr. Singh also held a bilateral meeting with his Vietnamese counterpart, General Phan Van Chiang. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% in the afternoon session today. The Sensex rose 262 points to 75,577, while the Nifty added 75 points to 23,725 when reports last came in. On the sectoral front, IT, realty and utility stocks were driving the market higher. And with that, we end this news bulletin.
5: श्रोताओ आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और अब हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए श्रोताओ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर जो है हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s टू 80s की ओर।

श्रोताओ, इस कार्यक्रम में पहला गीत आप सुनेंगे 1970 में आई फिल्म आन मिलो सजना से। आन मिलो सजना उस दौर के सबसे बड़े सफल मूवीज में से एक थी और इसका एक बड़ा कारण था इस फिल्म का ये गीत तेरे कारण मेरे साजन। इस गीत को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी है और ये गीत रूठे साजन को मनाने के लिए काफी असरदार माना जाता है। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, अपने रूठे साजन को मनाना बिल्कुल आसान नहीं है, और खास करके अगर वो एक मोहतरमा है तो उन्हें मनाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े प्यारे प्यारे बातें करनी पड़ती है। और ऐसी ही कुछ बातें कर रहे हैं शशि कपूर और अमिताभ बच्चन इस गीत में अपने रूठे हुए प्रेमिकाओं को मनाते हुए। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म शान से मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज में।

श्रुता, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा है, तुमसे नोकझोंक करने में जो मजा आता है, प्यार का इजहार करके मैं वो लुत्फ बिगाड़ना नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हम सुनेंगे अगला गीत जहां पर नोकझोंक चल रही है। इस गीत में डिंपल कपाड़िया ऋषि कपूर को वार्निंग दे रहे हैं कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी, तो ऋषि कपूर कहते हैं कि मैं तुम्हारी सौतन लेकर आऊंगा। तो चलिए इनके आगे के नोकझोंक को सुनते हैं इस गीत में।

0: श्रोताओं, प्यार में नोक झोंक के इस सिलसिले को जारी रखते हुए हम अगला गीत आपको सुनवाना चाहते हैं 1969 में आई फिल्म एक फूल दो माली से। इस गीत में हीरो अपनी हीरोइन को मना रहा है कि उसका प्यार सच्चा है, उसे एक्सेप्ट कर लो। तो बदले में हीरोइन कहती है कि उसे मजनू के नाना कि यहां से जल्दी निकल जाओ इससे पहले कि मेरी माँ तुम्हें ठीक करे। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
2: ये पर्दा

प्यारे श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s to 80s का आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं। ये गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s to 80s और आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए श्रोता, आगे बढ़ते हैं और आपका मनोरंजन करवाते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों के साथ हमारे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

प्यारे श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुण एफएम यानी कि आपका अपना एफएम, जहां होती है दिल से दिल की बात। और श्रोताओ, आपसे थोड़ी देर में यानी 2 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुँचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीजन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक

0: काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया।

0: और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, और ये कार्यक्रम है हिट्स ऑफ 90s।

दोस्तों, 90s का दौर जो है अपने रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए तो पॉपुलर है ही, लेकिन उतनी ही पॉपुलैरिटी मिली थी इस दशक के डांस नंबर्स को। तो आइए श्रोताओं, चले इस सेगमेंट में हम सुनते हैं उन आइकॉनिक 90s के उन आइकॉनिक डांस नंबर्स को जिनको सुनते ही आपके पैर थिरकने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले गीत से, द फॉर एवर आइकॉनिक छैया छैया से।

श्रोताओ, अगर छैया छैया के बाद अगर कोई गीत इसका मुकाबला कर सकती है तो वो है प्रभु देवा पर फिल्माया गया गीत मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, इस गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने और ये गीत इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि कई सारे लोग इसके अलग अलग वर्जन्स बनाने लगे और जिसने इस गाने को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। और इस गाने की USP थी प्रभु देवा का डांस। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को।

सुनेंगे। वो गाना इतना पॉपुलर हो चुका था कि उस गाने की एक हुक लाइन वो 90s में एक पॉपुलर कैच फ्रेज बन गई थी, यानी कि तकिया कलाम बन गई थी वो लाइन। चलती है क्या 9 से 12। जी हाँ श्रोताओं, इसी लाइन से आप समझ ही गए होंगे मैं किस गाने के बारे में बात कर रही हूँ।

मुझे दोबारा टंटना टन टन टन तारा चलते है कानों से पारा टंटना टन टन टन तारा चलते है कानों से पारा खड़ी खड़ी क्या सोच रही है चल हो जाए नौ तो ग्यारह टंटना टन टन टन तारा चलती है क्या

ऐसी कोला मैं तेरा हूँ कोका कोला। इंटरवल में पियेंगे दोनों बर्फ में लगा हुआ मैंगोला। जल्दी करके चढ़ना चाहे थर्मोमीटर का ये पारा। एक बार से दिल नहीं भरता मुड़ के देख मुझे तो पारा। कंटना कंटन कंटारा चलती है कानों से पारा। कंटना कंटन कंटारा चलती है।

रहा था फिल्म में तुझे दिखाऊं, शुक्रवार की शाम है।

कंडीशन फिल्म हसी वो जाने मन है ये फिल्मों में नंबर वन है गोविंदा है हीरो उसका और माधुरी हीरोइन है पिछली सीट की दो टिकते हैं कुछ जो प्यार करेंगे यारा एक बार से दिल नहीं भरता मुड़ के देख मुझे दोबारा

0: 지금 현재 계신 볼까자에 뭐 라동안 안참을 낀 그만 라킹성 파일라 나의 플라워 포 나의 바지크 삼라
1: 네, 아까스완이 이다는 걸 드브리고 미디엄 웹 시바 시습시 좀 시미터 호빠 지스바 킬로 하스메 무질랑 함대 함대 하고 마호 mane wan angka lani pi dai song hing pa sao tu ing na ji pi mo song hing sao ho nun me nei sip ka wan nam ho wadi kun sing kun meung tang lai mo sop nam kha mane he nei thom kha ta wan manga india norway business and research summit nia ti oslo mai chau pha hakun khan sam Prime Minister an Mung Norway Jonas Gahr Store tang Prime Minister Narendra Modi summit mai khawnang kan ma ne hasep company CEO lok mung tang pa tang man ne song pa hasep ku kun hit amu long ka nai khaw kan ma nam ho वन मंगा मई गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक केनमुंग न्यू दिल्ली तंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हुप नंग कनमा पोंगलोई नेशनल सिक्योरिटी इशू खनसम बॉर्डर सिक्योरिटी अन अरुणाचल प्रदेश में आउसी तान मुन कनमा वन मनाई मिनिस्टर कनलेम एजुकेशन पी डी सोना तकतांग कौहा काउंसिल मीटिंग अन अरुणाचल प्रदेश स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल नई नियाति ईटानगर में तकतंग कनमा मंचाओ सोशल मीडिया में टी एम सी लो खई हरमा मीटिंग नई लोंग कनपा रूसा लुंग चुम वालोम रुसा सोंग चुम वालोम खनसम पीएम यूएसएचए मई औसी नंगकन मा हो चीफ इलेक्टोरियल ऑफिसर अरुणाचल प्रदेश वन मंगा वर्चुअल ट्रेनिंग सेशन अनुंग नु स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मई तक तंग कन मा तंगकोप district election officer DEO khansam tang electoral registration officer homsi CEO pawan kumar sa wa long meeting nai ni nam si electoral roll wanai sa kun sing mueng hau ni si takput ho ma nam ho Minister Kanlem Transport Ojing Tasing Wan Manga Mai Review Meeting Anung Tak Tang Kanma Cha Hang Antima Golden Jubilee Madyam An Khong Transport Department Nia Ti Khunsa Mai Takha Minister Meeting Mai Wa Khian Si Lok Ku Pa Ku Na Chau Patin ในเขาเฮาในชอมมัดยำวันอำเภอไหมเอเมเลมุจูมิธีวันมังอาดิสตริกเลเวลมอนิเตอริงคอมมิตี้มีติ้งอันหนึ่งหังลัวดิบังเวลีคุมอินเตอร์แอคชั่นมีติ้งตักตังกันมาเอเมเลมุจูมิธีขันสัมปุญโยอปุมฟงดิบาร์ตเมนขันสัมเบียงเขาไหมเฮาในหอมฮิตอมูMiss Ruby Lombo Lokmung Hau Songko Pin Mountain Biking Coach Kanyao Lok Sport Authority Tak Tang Kan Ma Khan Sam Cha Hang Mane Kau Kham Thu Khai Ne Nam Ho Mane Mu Ui Kham Mai Lok Nang Chinawa Man Chi Mai Ha Ne Thom Kha Ta

श्रोताओं, आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम, जिसका प्रसारण किया जा रहा था आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और आप इसी चैनल पर आगे भी इनके कार्यक्रमों को सुन पाएंगे। और श्रोताओं, आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, बॉलीवुड अपडेट की ओर। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आने वाली नई फिल्म वेलकम टू द जंगल जो रिलीज होने वाली है जून 26, यानी कि अगले महीने। ये फिल्म 2007 में आई सुपरहिट फिल्म वेलकम की तीसरी फ्रेंचाइजी फिल्म है। ऑडियंस इस फिल्म को लेकर काफी उत्सुक है, लेकिन वो मिस कर रहे हैं दो खास कैरेक्टर्स को, उदय भाई और मजनू भाई को, यानी कि नाना पाटेकर और अनिल कपूर को, क्योंकि ये दो एक्टर्स इस आने वाली नई फिल्म का हिस्सा नहीं है। दरअसल नाना पाटेकर ने अपने एक इंटरव्यू में पहले ही बता दिया था कि वो इस फिल्म में नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से इस फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग इनफ नहीं है, तो वो इस फिल्म को स्किप कर रहे हैं। अब इस फिल्म के रिलीज के बाद ही हमें पता चलेगी कि ये फिल्म कैसी बनी है। और श्रोता, कुछ ही दिन पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है और अब टाइटल ट्रैक भी रिलीज हो गई है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में लगभग 40 सेलिब्रिटीज दिखेंगे। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, संजय दत्त, परेश रावल, जॉनी लीवर, तुषार कपूर, अरशद वारसी और बॉबी देओल जैसे कई और सितारे आपको दिखेंगे इस फिल्म में। तो हमें इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आइए श्रोता, इसी बात पे आपको सुनवाते हैं वेलकम टू द जंगल फिल्म का टाइटल ट्रैक।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। आप इनके आगे के कार्यक्रमों को अगर सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, आप हमारे साथ बने हुए हैं, हमें सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz पर। आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों को। चलिए,

अगर दुनिया से कुछ लेन देन ना करना, बस गो विद द फ्लो करना हो, लाइफ में टेंशन लेने की बिल्कुल आदत नहीं हो, अपनी ही धुन में रहना हो, अगर ये आपकी वाइब है प्यारे श्रोताओं, तो ये गाना आपके लिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे ईद उमिश्री श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वांछो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए, अब पेश है ईद उमिश में श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: एचा आकाशवाणी ईटानगर चोलापुटी जिहलुखी आंडली एतानी ईद उमिश में आहोला के जी दरगालम्बो।

प्यारे श्रोताओं, मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाते हैं, और अगर इस सफर में कोई प्यारा सा साथी हो तो ये सफर और भी हसीन हो जाता है। आपकी रुकी हुई जिंदगी झट से चल पड़ती है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत और इसके बाद आप सुन पाएंगे तानसा श्रोताओं का समाचार। और श्रोता, उसी के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का सेकेंड ट्रांसमिशन। और हमारे तीसरे ट्रांसमिशन के लिए आपके साथ जुड़ेंगे आरजे सुलोकना। तो अब मुझे यानी कि आपकी रेडियो साथी वामिन सुब्बी को आप दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz पर।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। इस कार्यक्रम को अभी सुनने के लिए आप ट्यून इन करें आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: और दोस्तों, जिंदगी हो या शान, ढलती जरूर है। किसी ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी हो या शाम, ढलती जरूर है, उम्मीद हो या सूरज, उगता जरूर है। इसी नोट पर सुहानी शाम की सुनहरी रोशनी में भीगा हुआ प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हम तीसरी प्रसारण सभा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले दूसरी प्रसारण सभा में आप सुन रहे थे आरजे सुम्पी को, और इस तीसरी प्रसारण सभा में मैं, यानी कि आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना, आपके संग बनी रहूंगी। नमस्कार श्रोता दोस्तों, एक बार फिर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना, और अब से लेकर रात्रि के 9:30 तक इस तीसरी प्रसारण सभा में आपके संग रहूंगी। संगीत, मुस्कान और कुछ दिल छू लेने वाली बातों के साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस सभा के विभिन्न कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। तो चलिए इस खूबसूरत शाम को और भी यादगार बनाते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में शुरू हो रहा है कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply. Good evening.

दोस्तों कहते हैं कि हर गुड इवनिंग अपने साथ नए सपने लेकर आती है। अब सपनों का तो पता नहीं, लेकिन हम लेकर आए हैं एक नया सेगमेंट। आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में तहे दिल से स्वागत है।

तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुन रहे थे पंछी बोले एम कीड़ावनी एवं पलक मुच्छल की आवाज में फिल्म बाहुबली से। एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में स्वागत करते हैं। और अब हम आपके लिए पेश कर रहे हैं एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी जिसमें अंगूरों की एक बेल लगी हुई थी। वहां रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती तथा अधपके व खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वो हाथ ही नहीं आई। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को ये बात बताई। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली और वाटिका में छिपकर बैठ गया। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने तेजी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। अब आगे, जब राजा चिड़िया को मारने लगा तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की चार महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, जल्दी बता। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले तो हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूल कर भी विश्वास मत करो। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। फिर राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी बता दो। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी गुड़ और रहस्यमयी है, मुझे जरा ढीला छोड़ दो क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, कुछ सांस लेकर ही बता सकूंगी। चिड़िया की बात सुन जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में दो हीरे हैं। ये सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गया। राजा की हालत देख चिड़िया बोली, हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। मैंने ये असंभव बात कही कि मेरे पेट में दो हीरे हैं, फिर भी आपने उस पर भरोसा कर लिया। आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे।

तो दोस्तों, ये थी कहानी ज्ञान की बातें, और हमें यही सिखाती है कि उपदेशों को जीवन में उतारे बगैर उनका कोई मोल नहीं।

0: दोस्तों, कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, और फिर शाम के 5 बजे आप सुनेंगे नौकते श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। हम फिर आपसे मिलेंगे शाम के 5:05 पर यही आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो पर, आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर्ड ने नई दिल्ली के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से मुलाकात की। शिक्षा राज्य मंत्री पीडी सोना ने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की 9वीं परिषद बैठक की अध्यक्षता की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर एक वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र आयोजित। अरुणाचल प्रदेश की रूबी लम्बो ने इतिहास रचते हुए राज्य की पहली माउंटेन टेरेन बाइक MTB कोच बनने का गौरव प्राप्त किया।

0: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह में भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और 3 वनडे मैचों के लिए भारत की टीमों की घोषणा कर दी गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टियरसन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के इस समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में यह भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, विशेष रूप से राज्य पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें सीमा सुरक्षा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और अग्रिम क्षेत्रों में गुडविल प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन शामिल है। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने हालिया दौरे के अनुभव साझा कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति और तैयारी का आकलन किया। उन्होंने पूर्वी सीमा के कुछ हिस्सों पर उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता जताया और सीमा प्रबंधन एवं अवसंरचना को मजबूत करने पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने सेना की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के साथ मजबूत समन्वय स्थापित किए हैं। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद की नौवीं परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यभर में उच्च शिक्षा सुधारों और चल रहे आधारभूत संरचना विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बैठक की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि

0: बैठक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA 1.0, RUSA 2.0 तथा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत हुई प्रगति का आकलन किया गया, जिसमें अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी है या तो पूर्णता के करीब है। उन्होंने कहा कि बैठक में संस्थागत विकास योजनाओं को अद्यतन करने, सभी संस्थानों के लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्थानांतरण रोडमैप तैयार करने जैसी प्रमुख प्राथमिकताओं को दोहराया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर एक वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सैनी ने बताया है कि SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध, सटीक और समावेशी बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक छूटा न रह जाए और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो पाए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित कर उन्हें SIR की जानकारी देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों के अपने अपने जिला दलों के साथ SIR पर समन्वय बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए। अरुणाचल प्रदेश की रूबी लोम्बो ने इतिहास रचते हुए राज्य की पहली माउंटेन टेरेन बाइक MTB कोच बनने का गौरव प्राप्त किया है। वह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI द्वारा एशियन माउंटेन बाइक चैंपियनशिप 2026 ताशकंद उज्बेकिस्तान के लिए टीम इंडिया के चयनित की गई है। वे राज्य की एकमात्र महिला कोच है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें बधाई देते हुए आगामी एशियन MTB चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया की सफलता की कामना की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जो एक सप्ताह में भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें अब 98.64 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमतें 91.98 रुपये हैं। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 प्रति लीटर बिक रही है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपये और डीजल की 96.700 रुपये दर्ज की गई है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की 96.11 रुपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हॉर्मुज जलमग्न मुख्य के रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी तेजी के बाद की गई है। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और 3 वनडे मैचों के लिए भारत की टीमों की घोषणा कर दी गई है। विराट कोहली, रोहित शर्मा वाली वनडे टीम में प्रिंस यादव को पहली बार जगह मिली है। KL राहुल को टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह को दोनों ही सीरीज से आराम दिया गया है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया था। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार में संविदा सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर आ गया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Apu Gapak. Prime Minister Narendra Modi reached Norway yesterday after completing his visits to UAE, the Netherlands and Sweden. Last evening, he attended the India-Norway Business and Research Summit with Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of trade and economic partnership agreement. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 million under and the consequent creation of 1 million jobs in India. Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at present of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of global uncertainty, energy insecurity

0: श्रोता दोस्तों, आप हमारे न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन का भी डाउनलोड कर आकाशवाणी ईटानगर एवं अरुण एफएम के सभी कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही पलों में प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।
1: I love my Eco because it's got more power.
2: And it also comes with all new safety features.
3: We love our Eco because we can bring all our friends.
4: We love our Eco because it's made every journey special.
5: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to Rs. 37,500.

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम इवनिंग ड्राइव।

हुसन तेरा तौबा तौबा। करण औजला के इसी गीत के साथ ही हमने शुरू कर दिया है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ चलते हैं अगले गीत की ओर। अपना दिल थामिए और चलिए सुनते हैं लुट ले गया।

सिमरन चौधरी एवं शाश्वत सचदेव की आवाज में अभी आप सुन रहे थे द मोस्ट वायरल सॉन्ग ऑफ 2025। जी हाँ, आप सुन रहे थे ये गाना फिल्म धुरंधर पार्ट 1 से।

दोस्तों, हर शाम हमें ये याद दिलाती है कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। संध्या का सूरज यानी कि सनसेट भी हमें यही सिखाता है कि डूबने के बाद भी अगली सुबह चमकना संभव है। तो अब दिन भर की थकान को छोड़िए, एंड फॉर्चुनेटली हम भी बने हुए हैं आपके संग आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

मोहन एवं उनके साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे कुसु कुसु फिल्म सत्यमेव जयते 2 से। और दोस्तों, इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए चलिए बढ़ चलते हैं ऐसे ही धमाकेदार गीत की ओर।

दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त हो जाए। पर खैर, आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में हम फिर हाजिर हो रहे हैं लेकर कार्यक्रम शाम की महफिल। और चलने से पहले आपको बता दें कि आप सुन रहे थे ये खूबसूरत नगमे फिल्म शिद्दत से।

कुछ ऐसा जहां हम बनाए। बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ हमने शुरू कर लिया है कार्यक्रम शाम की महफिल। और हाँ, ये गीत जो आप सुन रहे थे वो गीत है फिल्म बस इतना सा ख्वाब है सिर्फ। तो दोस्तों, कहते हैं कि दिन भर की भागदौड़ दिमाग को थकाती है, लेकिन ये मखमली शाम ये सीधे रूह को सुकून देती है। दिन भर की परेशानियां, कल की चिंताएं, अब सब कुछ कुछ पलों के लिए भूल जाइए और इस पल में अपने लिए सुकून ढूंढें। हम हैं ना आपके संग बने हुए कार्यक्रम शाम की महफिल के संग, जिसे आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: किसी ने क्या खूब लिखा है, लिखा है कि शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, कि शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, ये दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए। तो दोस्तों आप सुन रहे थे तेरा नाम दू फिल्म एंटरटेनमेंट से, यह कार्यक्रम शाम की महफिल, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: Advanced tech, explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

तेरी याद सुबह शाम उदित नारायण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गाना फिल्म और प्यार हो गया से। और तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, जिक्र होता है तब कयामत का, मुझको याद आता है ढलना शाम का। और वो जो कहते हैं कि सब कुछ सांसों से चलता है, उन्हें क्या पता मेरी हर सांस पे नाम लिखा है किसी खास का। तो दोस्तों, शाम की इस तन्हाई में जब वो चेहरा आंखों के सामने आ जाए तो दिल बस यही दुआ करता है कि काश एक बार, बस एक बार वो दीदार फिर से हो जाए, जिसे देखने के बाद दिल ने धड़कना सीखा और धड़कनों ने बगावत करना।

सॉफ्ट सूदिंग सोलफुल हिंदी गीतों के सफर के कार्यक्रम ये शाम की महफिल में पेश है आज के इस अंक का आखिरी नगमा।

आंखें तो कह रही है तुम्हें मुझसे प्यार है। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन हम जा कहीं नहीं रहे। अब से कुछ ही क्षणों में फिर हाजिर है लेकर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओनली ऑन आकाशवाणी ईटानगर सरगुन FM 103.1 MHz। तो आप भी हमारे संग बने रहिए।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में। असीस कौर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गाना फिल्म शादी में जरूर आना से। और इसी गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया है हिंदी फिल्मी गीतों का ये खूबसूरत कारवा। दोस्तों, इस अंक में हम आपके लिए हाजिर है बैक टू बैक हिंदी फिल्मी नगमों के संग। जाहिर है बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स का तड़का भी लगेगा। लोग कहते हैं कि मजा दोगुना करने के लिए ये थोड़ा सा ठहराव भी जरूरी होता है जिंदगी में भी और वैसे भी। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं अगले गीत की ओर, जिसे खास हमने आपके लिए चुना है।

तो दोस्तों, इस मौसम की बारिश गीत के साथ ही हम आप सभी को छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। हम फिर मिलेंगे आप सभी से इस समाचार के बाद।

तो आप सुन रहे थे 90s के मशहूर गानों में से एक ये गाना, ओ यारा दिल लगाना, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म अग्नि साक्षी से। आपको बताना चाहेंगे कि इसी गीत के साथ ही शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम आज के कलाकार की। और हाँ, आपने गेस तो जरूर कर ही लिया होगा कि आज इस अंक में हमारे कलाकार है कविता कृष्णमूर्ति।

तो दोस्तों इस अंक में हम पेश करेंगे कुछ नगमे कविता कृष्णमूर्ति के और बातें भी करेंगे कविता कृष्णमूर्ति जी की ही। बहुत कम लोग जानते हैं कि कविता कृष्णमूर्ति का असली नाम शारदा कृष्णमूर्ति है। दिल्ली में जन्मी कविता ने बेहद कम उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना महान गायक मन्ना डे ने, जिन्होंने उन्हें विज्ञापनों में गाने का मौका दिया। इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के साथ मिलकर उन्होंने जो जादू बिखेरा, उसने उन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी आवाजों में शामिल कर दिया। चाहे मिस्टर इंडिया का चुलबुला हवा हवाई हो, खामोशी का रूहानी आज में ऊपर हो, या फिर देवदास का क्लासिकल डोला रे डोला, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज हर दिल की धड़कन बन गई है। उन्होंने अपनी गायकी के लिए लगातार 3 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था।

तो दोस्तों, ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। और आज के कलाकार इस अंक में है कविता कृष्णमूर्ति। तो क्या आप जानते हैं कि कविता कृष्णमूर्ति ने अपने करियर की शुरुआत डबिंग आर्टिस्ट के रूप में की थी? महज 9 साल की उम्र में ही उन्होंने दिग्गज गायिका लता मंगेशकर के साथ बंगाली में टैगोर का एक गीत रिकॉर्ड किया था।

उन्हें कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है, पर क्या आप ये भी जानते हैं कि उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर और ईयर 2005 में भारत के 4थे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और क्या आप ये जानते हैं कि ईयर 1999 में उनकी शादी प्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीतकार एल सुब्रमण्यम से हुई थी।

कविता कृष्णमूर्ति के इसी नगमे के साथ ही कार्यक्रम आज के कलाकार में बस इतना ही। छोड़े जा रहे हैं इसी गीत के साथ अब से कुछ ही पलों में। श्रोता दोस्तों, आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से।

0: bakpe ke muma kunam plega ba chigo dogo lo tele dor dam ham kai yad ba मुझ कुनाम लेगा बा सोक पेट्रोल डीजल के तोर दाम खम कई याद बा मुझ पुकने बा खम मैं पाता तो मोर का सी आल हो नितने दिल्ली लो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट का गवर्नर के टी परनाई के यह कार्यकारिशिप खूब और का अरुणाचल प्रदेश स्टेट के आगो लो मिम्पीला मोकम अलब चतुर्मेन तोर ला सिग दाग सा गला गदा अर दूर में से खोखलो अलब चतुर्मेन तोर में से दुखुब नामपोम हम अलब मुजिसा प्रोग्राम और प्रोन्टियर गदा गद लो अल अलने प्रोजेक्ट गद हम अलब मदर मोपा जिसका लिक लोक अगम आम लिख हम सोक निदुम एनी है मैं गो जाप का मिश पुकुन में हम मैं पादो और खेल दा अरुणाचल प्रदेश स्टेट का अदो अदो गुदा लो जनर अरिन चौहान के कागो भी गोजी नम आगम फर्म गवर्नर ये जापा मिश ला रेड कुला सो अरब चतुर में तोर ला रेग दाग को कुलुक लोला की मोकरे गुदा अर दूर मिश कोकलो ये मुना हरिगो मेंगो हम रिकर्मिंग कर गग दुख दे हकने लुक लो न्यू हेंड्रा कारा ला रेड कुने हम ला जापा पुकुने में हम तो ओ अरुणाचल प्रदेश थे थे लो आर पोर्स गुद ग हरिगो मेंगो हम स्टेट सरकार ग अजन ब अरब रेग दाग दुखने हम ला गवर्नर ये आर गुद ने जब तक हम आगों हम जब तक पुकने में हम में पाता तो नुसीनी शिपु इस माखासवानी इतना पुकुम लोक ताल दोनिया तो हायर एजुकेशन नियम हम कादर तापा जिद बला अरुणाचल प्रदेश स्टेट के कुमसु कुबरा गुदा मिल लो युकु यरा लिख लो डेवलपमेंट रिग पाग गला रेग दाग को लिख लो कादर तापा जिद कुब सिलो ईटानगर लो लिग खोना नन अरुणाचल प्रदेश स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल कबा वा कुनाम हम स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर दरब फीदी सोनाय उबु गलो दो गदाग पुकन बखब ने पा दो ओक्सो कबा दो को लिख लो क अगम आ गुरु हम सोशल मीडिया लो पोस्ट मूल ग्ला मिनिस्टर ये जापा जी दिक ला शो रूसा 1.0 रूसा 2.0 ओक पीएम उसा अरा लोक यिद नोगो रिलेन दागरेन जिप खुद ओक सोक्तायो लो प्रोजेक्ट ते यान गोन हम मोजेग्री जेग जिनाम गला मेंगनम मंगोला पाग ग्रीकला मोजेग ततनाम ओक इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान मोनाम हम अपडेट मोस सुटी पोता फुर रिकोक लोक लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट गुग सा और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आजन व इंस्टीट्यूशन वाइज लो रिकमेंड हम रेजिमेंट जी साल के लो सोक कबादो कुम लो मेगो जब का मिस पुकने में खबर मिनिस्ट्री जब पता कुम खबर तो अरुणाचल लोक ये यारा के बपा मोबे दुकु ब तामु तामा के रूबी लोम्बो ये स्टेट लोक माउंटेन बाइकिंग कोच लो पर्त पाक ब पाने ब रिद कुनम ओके एशियन माउंटेन बाइक चैंपियनशिप 2026 हम उज्बेकिस्तान के तास्केंट लो रिकामिस्ताक लो भारत के टीम लो इंपा चापा मोदुकु ब रूबी लोम्बो ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दार्लिन पुकुनम ओके भारत के टीम लो स्टेट लोक मेनिम कोच लो सीटी शिके बे सिलन कुने बे रूबी लंबो ये रेड कुने खमला मैं पा दो ओके तामे तामा रूबी गे अलब हिलन दागन कोक लो अलब पाग कुने खमला अरुणाचल प्रदेश स्टेट गे चीफ मिनिस्टर ने पेमा कांडो ये सोशल मीडिया लो फर्स्ट मुल्क ला जब लोग ग्रीक ला सो आर ने गे एशियन एमटीवी चैंपियनशिप लो अलब रिकमेंड का मिस ला हिलन दागन गी का खमला रूबी लंबो ने ला भारत गे टीम गुड इन चीफ मिनिस्टर दर खांडु ये कुमलक जोलक जीप को मखम ने पा था तो कस रुंगा निशे पुये है वो
1: शी आकाशवाणी इतानो पोको में सको के बताने के दस रुम निशे में मनम
2: आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार। आगे इस कार्यक्रम को पूरा सुनने के लिए आप अभी ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी ईटानगर का रुन FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कारवा।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Don't You Talk to a Stranger फिल्म एक अजनबी के इसी गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का कारोबार यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में लेकर आ रहे हैं हिंदी फिल्मी फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश। जी हाँ, ये फोन इन कार्यक्रम है, तो अब से कुछ ही पलों में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं।
1: Performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: हेलो फरमाइश।
4: हेलो फरमाइश।
5: आदरणीय श्री बागरा साहब, सादर सत्प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
4: प्रेम और प्यार भरा नमस्कार आपको भी और आकाशवाणी ईटानगर हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: जी हृदय से धन्यवाद। मानवर मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र
4: शारदा प्रसाद मथुरा से। शारदा प्रसाद जी, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कहिए क्या चल रहा है अभी?
5: मानवर बस आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है।
4: क्या
5: आप
4: बात
5: लोगों
4: है?
5: से वार्तालाप करना मेरा शौक है और मुझे काफी खुशी प्रसन्नता होती है जब आकाशवाणी ईटानगर में फोन लग जाता है।
4: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी, आज भी फोन तो लग ही गया।
5: जी
4: जी, और मौसम का हाल कैसा है आपके वहाँ?
5: मानवर इस वक्त मथुरा वृंदावन में जबरदस्त गर्मी का वातावरण है, चिलचिलाती हुई चमचमाती हुई धूप रहती है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं और पूरा मथुरा वृंदावन लू की चपेट में है।
4: ओहो जी जी,
5: क्या है कि यहाँ पर तापमान लगभग 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दिन में हो जाता है और रात 30 डिग्री के आसपास रहता है।
4: जी जी जी, बाहर निकलना तो संभव ही नहीं हो पाता होगा तब तो।
5: जी इस वक्त बाहर निकलना मतलब जान जोखिम में डालने वाली
4: जी,
5: बात
4: जी,
5: है
4: जी,
5: बहुत ही खतरे की घंटी है। लू का प्रकोप है, लू की चपेट में आने से स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है और लू की चपेट में आने से ना तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिससे कि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए धूप से बचे, 11 बजे से लेके शाम को 4, 4:30, 5 बजे तक न निकले तो ज्यादा अच्छा है, उसके पश्चात अपना काम कर लें सुबह अथवा शाम को।
4: जी जी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो इस पर जरूर अमल करेंगे, हम यही आशा करते हैं।
5: जी यदि संभव नहीं हो, बहुत जरूरी काम हो तो धूप में निकलने से पहले खूब पानी पी ले, पानी पीने के पश्चात ढीले ढाले कपड़े पहन ले, सूती कपड़े, और सिर को ढक ले, चाहे वो रुमाल से चाहे टोपी से या पगड़ी लगा ले, हेलमेट लगा ले, उसके बाद फिर घर से निकले और समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें जिससे कि हमें डिहाइड्रेशन नहीं हो, और घर लौटने के पश्चात शरीर का तापमान नॉर्मल होने के पश्चात ही कुछ खा पी के फिर पानी पिए, अन्यथा उसमें भी समस्या उत्पन्न हो सकती
4: जी,
5: है।
4: जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब से गर्मी शुरू हुई है तब से आपने अपना यह विचार रखा है रेडियो पर और हमें लगता है कि हमारे जो श्रोता है जरूर इस पर अमल कर रहे हैं और अपने आप को लू से बचा रहे हैं।
5: जी
4: जी जी जी, तो शारदा प्रसाद जी कहिए घर बैठे बैठे अब कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
5: बस इस गर्मी भरे वातावरण में यही सबसे कहना चाहता हूँ कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए।
4: जी जी जी जी, वो
5: जी फिल्म का पत्नी और तवायफ महेंद्र कपूर साहब।
4: और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
5: जी
4: पति
5: गीत आदरणीय बागरा साहब के साथ साथ में याद करना चाहता हूँ सर श्री अविनाश जी आशुतोष।

0: जी, संगीता जी, लोकेन्द्र वर्मा, राजू यादव, राजू लवानिया, राकेश कुमार जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, नाथ जी, और साथ में अर्जुन प्रधान, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर से आर्य भागरा साहब के साथ सभी सम्मानित श्रोताओं को शारदा समर्पित करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा प्रसाद जी। तो आइए सुनते हैं आपके पसंद का गाना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी।
1: नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम
0: जी।
1: राधे राधे।
0: राधे राधे जी,
1: है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और मैं अनूप कुमार भट्टाचार्या बात कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है
0: जी,
1: जिसका नाम है बोके बागेरा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी,
1: मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर।
0: हाँ जी।
1: डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, आसाम से तालुका।
0: आसाम से हमारे दोस्त अनूप कुमार भट्टाचार्य। जी जी जी, हाँ।
1: जिंदगी में मुसीबतें तमाम है, फिर भी इस चेहरे पर मुस्कान है। जब जीना ही है हर हाल में, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है?
0: वाह, बहुत ही अच्छी बात कही। मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और बाकायदा आज क्या कहूँ, मतलब बाकायदा नहीं है, एकदम मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरा मन में एक सुकून भरे हुए थे,
0: जी हाँ जी,
1: हमारे दोस्त से
0: बातचीत जरूर होगी।
1: बात हो जाए,
0: हाँ जी, हाँ जी
1: और भी बात हो रहा है
0: जी,
1: ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: जी,
0: हाँ जी,
1: तो हमारे वहाँ के मौसम के मिजाज तो थोड़ा
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: नरमी नरम सी हो गए हैं, क्योंकि 2-3 रोज से बारिश हो रहा है। इतना बारिश जोरदार नहीं है, इतना
0: अच्छा
1: कम नहीं है,
0: अच्छा अच्छा जी जी जी
1: क्या बोलते हैं, ये बारिश टिप टिप टिप टिप करके बारिश हो रहा है, और मौसम भी थोड़ा बहुत क्या कहो, मतलब
0: सुहाना हो
1: ठंडा
0: गया
1: है।
0: है, सुहाना हो गया मौसम
1: और आपके वहाँ के मौसम भी
0: जी
1: वैसे ही
0: अनुपदा।
1: है
0: हमारे
1: ना?
0: यहाँ पे भी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है
1: जी जी
0: जी, तो ठंडा है अभी, मौसम बहुत ही बढ़िया है।
1: जी जी जी
0: हाँ जी,
1: तो चलिए आज एक प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी।
1: फिल्म का नाम है साजन का घर, और गाने का बोल ऐसे है।
0: जी
1: अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ऐसे करके गाने हैं।
0: जी, खुशियों का पल जरूर आएगा अगर हम ढूंढने की
1: जी
0: कोशिश
1: जी जी
0: करेंगे जी।
1: और
0: हाँ
1: कुछ
0: जी,
1: दोस्त को मैं याद करता
0: बिल्कुल
1: हूँ।
0: बिल्कुल जी जी अनुपदा।
1: पहले है हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसका नाम बके बागेरा जी
0: धन्यवाद जी।
1: और नूरी मैम के
0: हाँ जी,
1: लिए,
0: हाँ जी, नूरी मैम के
1: और
0: लिए भी।
1: है नूरी मैम भी बहुत अच्छी है,
0: जी जी जी जी
1: और बसंतीलाल सूर्यवंशी जी है, प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है, बापन आचार्य जी है, सिंधु दास जी है, और कश्मीर से हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे पुरुषोत्तम कुमार जी है, विजय सिंह लखेरा जी है, और सतीश भाई के लिए और मानवार भाई के लिए, अनवार भाई जी के लिए, ओम प्रकाश नेमा जी के लिए, और श्रीकांत जोशी जी महाराष्ट्र। तो दोस्त बातचीत को यही पे विराम देता हूँ, भाई अलाफा
0: ओके
1: रहिए।
0: जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुपदा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ बंधु।
0: बाहुबली जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है आप जैसे बड़े बुजुर्ग जब हमसे बातें करते हैं और अपनी अनुभवों को हमारे साथ साझा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है।
1: मुझसे दूर थे तुम, हम मिलना अच्छा लगा, सागर से गहरी लगी आपकी दोस्ती, ऐसा तो आता था मगर डूबना अच्छा लगा।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी शायरी से आपने शुरुआत की आज की बातचीत को। जी, आप कैसे हो बताइए।
1: माजी, मैं तो मस्त हूँ, आनंद में हूँ, आपकी मंगल कामना और प्रभु की छत्र छाया में 84 साल के उम्र में मस्त और सुचारू रूप से जीवन यापन चल रहा है बंधु।
0: क्या बात है, क्या बात है बाहुबली जी, बहुत ही अच्छा लगा। आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे हमेशा, हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं। कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: तो एक फिल्म प्यासा का गीत, जिसमें
0: जी
1: समाज में जो अपने बहने और माताओं की जो एक बोले तो बहुत ही नीचा दिखाने वाली परिस्थिति के ऊपर एक कवि ने बहुत ही अपने मार्मिक शब्दों में उसको उजागर किया है।
0: जी,
1: कहा है ही जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहा है। ऐसी बोल है उसमें, और ये तो अपने पुराने शायर रहते
0: जी,
1: तो उनके जज्बात और उनके अंदर के रूह से जो शब्द निकलते वाकई उसमें कुछ भी वजन रहता है भाई साहब।
0: जी जी जी जी बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो जरूर सुनाएंगे आपको इस गीत को, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे आप इस गीत को बाहुबली जी?
1: अरे भाई साहब, ये कार्यक्रम में
0: जी
1: मुझे प्रवेश करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बहुत ही प्रिय हित चिंतक मित्र
0: जी
1: लोकेंद्र जी वर्मा ने मुझे सूचित किया।
0: अच्छा, जी
1: और
0: जी जी
1: उनके निर्देशन में मैं प्रयत्न किया
0: जी,
1: और आप जैसी शून्य अनाउंसर से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: और दो शब्दों का आदान प्रदान विचारों में
0: जी जी
1: जो
0: जी
1: दोनों के विचारों में एक सूत्रता दिखी
0: जी,
1: उससे मन बहुत ही प्रसन्न हुआ है बंधु।
0: जी जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम धन्यवाद लोकेंद्र वर्मा साहब को भी करना चाहेंगे जिन्होंने आपको हमसे मिलवाया जी। तो
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं। नमस्कार।
1: ओके सर, ओके।
0: जी
2: घर दिलकशी के ये लुटते हुए कारवा जिंदगी के कहाँ है, कहाँ है मुहा

एक सौ दे ये सौ दो पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है।

कलियां ये बिकते हुए खोखले रंग रलियां जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है।

आदि सांसों पे तबले की धंधा वो उजले दरीचों में पायल की छन छन थकी आदि सांसों पे तबले की धन धन

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार नमस्कार। मैं असम से बात कर रहा हूँ, सुतपा भट्टाचार्या।
0: सुतापा दी, बहुत दिनों के बाद आपने कॉल किया।
1: बहुत दिन से ट्राई कर रहा है, लगता नहीं।
0: अच्छा, जी, आजकल बहुत ज़्यादा लोग कॉल करते हैं ना, इसीलिए थोड़ा
1: जी
0: बिजी रहता है लाइन। और कहिए आप कैसे हो?
1: हाँ, मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो?
0: हाँ मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और आपके वहाँ पे मौसम कैसा है?
1: मौसम तो सुहाना है,
0: सुहाना है,
1: बारिश
0: बारिश।
1: हो रहा है।
0: ओके ओके, बिष्टीपुर से।
1: जी,
0: ओके ओके, तो बोलेन आज के कौन फिल्म और गाना आपने सुनबेन?
1: गाना सुना दीदी। एक फिल्म का नाम तो पता नहीं, गाने का बोलते हैं
0: जी,
1: दिल में आसमां आंसू हमें रह गए।
0: दिल के अरमा आंसुओं में बह
1: दिल के
0: गए।
1: आसमां आंसू हमें रह
0: जी
1: गए।
0: जी जी हाँ जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: पहले तो आपके लिए,
0: धन्यवाद।
1: नूरी मैडम के लिए,
0: ओके जी जी जी हाँ
1: कुसुम
0: जी।
1: जी के लिए,
0: ओके, इन सब के साथ आप सुनना
1: अनुपमा
0: चाहेंगे?
1: भट्टाचार्य,
0: हाँ,
1: प्रमोदी चक्रवर्ती, बसंती लाल सूर्यवंशी, देवजीत दास, सतीश भाई, अमर सिंह साहू,
0: ओके
1: बपन आचार्य, सिंधु दास, श्रीकांत
0: ओके।
1: जोशी।
0: अच्छा, पीछे से अनुपदा आपको बोल रहे हैं ना? अनुपदा का आवाज भी सुनाई दे रहा है। कोई बात नहीं। जी,
1: जी।
0: हाँ कभी कभी हम लोग को नाम याद नहीं रहता है ना। जी
1: हाँ, थैंक
0: जी
1: यू।
0: जी तो थैंक यू सो मच सुतापादी कॉल करने के लिए। सुनते हैं आपके पसंद का गाना। ओ

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश।
0: हारून साहब हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे हैं सुनाइए।
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, और आपके इधर
0: जी
1: आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ही बढ़िया है, आपके वहाँ का क्या मिजाज है?
1: मौसम भैया कुछ गजब है, लू चल रही है, चल रही है, गर्मी पड़ रही है, उमस है खतरनाक।
0: जी जी जी जी, तो गर्मी से अपने को बचाए रखें, जब भी काम ना हो तो घर पर बैठे और हमारा कार्यक्रम सुने।
1: जी जी
0: जी, तो कहिए आज घर बैठे
1: मौसम, गर्मी के मौसम कैसा है आपके इधर?
0: हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है दो तीन दिन से लगातार,
1: उमदा मौसम है, ठंडा मौसम है।
0: जी जी जी
1: जी, हमारे इधर तो आधी तूफान चढ़ गया।
0: अच्छा अच्छा,
1: तूफान चढ़ गई, बारिश भी हो गई, अभी 10-15 रोज पेड़ वगैरह गिर गए हैं।
0: ओहो जी जी जी जी
1: जी,
0: ओके,
1: आधी तूफान वगैरह हो गया जहाँ पर।
0: अच्छा, कभी आंधी तूफान तो अभी गर्मी, भीषण गर्मी। ओके,
1: अभी तो गर्मी अभी पड़ रही है 10 दिन रोज से।
0: बाप रे जी जी जी जी, हाँ जी, तो खूब पानी पीजिए, अपने आप को गर्मी से बचाए रखिए।
1: ज्यादा बताते हैं पानी ज्यादा पिए, वो तो 24 महीने 12 महीने में तो।
0: जी जी जी जी, सही बात है,
1: समय हो गया 2-3 महीनों से बातचीत हो रही है।
0: ओहो ऐसा, ओके ओके जी,
1: असल में कहा दूसरों को मौका भी मिलना जरूरी है।
0: हाँ जी, ये बात भी बहुत सही कही आपने हारून साहब, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। जी,
1: जी
0: तो कहिए आज कौन सा फिल्म गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है माफिया का, सुना देना।
0: ओके,
1: उमा सानू का आवाज में सुना देना।
0: ओके,
1: दिल ये पागल,
0: दिल ये पागल है। ओके,
1: मंगल के दिन आएगा ना, टाइम चेंज।
0: हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ, शाम को FM पे होगा 7:35 को, और मीडियम वेव पे 8 बजे, 2 बार बजेगा कल रात को। जी
1: अच्छा,
0: और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे, किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: ईटानगर में सब श्रोता सुनना है, सबके लिए है। प्रतम कुमार हैं, गजरा रोधी हैं, रुकित वर्मा हैं, भगवान सिंह परमा सिंह हैं, रुकित वर्मा हैं, और जिस श्रोता सुनना है सबके लिए,
0: सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। तो हारून जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी,

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ।
0: ओ हो जी, अमल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप, सुनाइए।
1: सर
0: जी मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो।
1: जी मैं भी अच्छा ही हूँ, और मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं है, ज्यादा बारिश भी नहीं दे रहा है, ठंडा हो रहा है थोड़ा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी, हमारे यहाँ पे भी लगातार बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही प्यारा है। और आज खेत नहीं गए।
1: हाँ खेत में तो अभी नहीं गए हैं, थोड़ी
0: अच्छा
1: देर बाद में जाना पड़ेगा पत्थर में।
0: ओके ओके ओके जी जी जी,
1: पानी नहीं हो रहा है, बारिश होने से भी हमारे पत्थर में काम करने के लिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है
0: ओके
1: पानी
0: ओके
1: की वजह से।
0: अच्छा, पानी तो जरूरी है खेती के लिए।
1: हाँ हाँ
0: हाँ जी
1: हाँ
0: हाँ जी, तो बारिश नहीं हुई अभी तक।
1: बारिश तो हो रही है लेकिन
0: हल्का
1: छोटी
0: फुल्का
1: छोटी
0: ना।
1: बारिश, हल्का सा बारिश आ रहा है, भारी बारिश
0: ओ
1: नहीं आ रहा, इसलिए पानी नहीं हो रहा है पोखरी में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी, ओ तो बिना पानी के तो खेती करना मुश्किल ही होगा
1: सामने तो
0: जी।
1: इसे नोटी वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारा वहाँ
0: ओहो
1: पे लाभ होने की भी चांस नहीं है ज्यादा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी ओके, अगर आपने सामने कोई नदी
1: लेकिन
0: होता
1: तो
0: तो।
1: जगह बहुत ही अच्छी है हमारा यहाँ पे, तो
0: अच्छा जी जी जी, लेकिन पानी की
1: बारिश
0: कमी है।
1: होते है तो खेती कर सकता है, जो बारिश नहीं होता है तो खेती कर नहीं सकता है, ज्यादा
0: ओके, मुश्किल होता है ना।
1: फसल नहीं मिलता है।
0: जी जी जी जी सही बात। तो हम आशा करते हैं जल्दी अच्छी बारिश हो ताकि आप खेती कर
1: हाँ
0: सकें।
1: हाँ
0: हाँ जी, तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं।
1: आज मैं मिट्टू डन फिल्म का कह दो एक बार सजना ये गाना को सुनना है।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोग के साथ सुनना चाहेंगे।
1: मेरे दोस्त है भाईकुन मुंडा, बिमल बसुमतारी, रमेश पात्र, रमेश प्रजापति, जगेंद्र रोंगपी, देवाशीष हजूरिका, हितेंद्र दास, मीनल अहमद, अविनाश टेली जी है, और अनुप कुमार जी है, प्रेमजीत चक्रवर्ती है, और रमेश प्रजापति, और शारदा प्रसाद है, और राकेश है, गोल्डी पूरन वर्मा है, रमेश टेलर है, और योगेश चांगरी, गौतम राय बोले, और बहुत सारे दोस्तों को, और साथ में आपको भी, और नूरी मैडम को भी,
0: ओके,
1: और सभी अरुण एफएम और आकाशवाणी ईटानगर के सभी आर्टिस्ट के
0: तो अमल
1: लिए
0: जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद
1: बहुत
0: का
1: बहुत
0: गाना।
1: शुक्रिया सर।
0: जी जी नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते जवाहरलाल जी।
1: जी हाँ जी हाँ, मैं कचहर से बोल रहा हूँ, जवाहरलाल वर्मा
0: जी।
1: इतना बिजी है सर, हेलो फरमाइश क्या बोलूँ यार आपको।
0: जी जी जी जी काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं ना हमसे।
1: जी हाँ जी हाँ जी, बहुत सारे श्रोताओं ने जुड़ते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: काफी समय पे ट्राई करते करते अभी लग गया
0: अच्छा
1: सर
0: अच्छा जी जी चलिए लग तो
1: तो
0: गया।
1: बहुत हाँ,
0: और
1: बहुत अच्छा
0: कहिए
1: लगता है।
0: आप कैसे हो?
1: ठीक ठाक हूँ सर, आप कैसी है सर?
0: जी मैं भी बहुत ही ठीक ठाक हूँ। मौसम भी बढ़िया है आपके वहाँ, बारिश?
1: सर जी हाँ, बारिश तो होता रहे है, 2-3 दिन से हल्का हल्का सा बारिश हो रहा है,
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी
1: और
0: जी
1: दिन में तो बहुत धूप है सर, बहुत गर्मी है,
0: ओहो ओके ओके।
1: बहुत गर्मी है।
0: अच्छा, तो काम ना हो तो बाहर ना निकले, यही अच्छा रहेगा।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: जी हाँ
1: यही
0: जी
1: तो सही बात है सर।
0: जी जी जी घर पे बैठिए और रेडियो सुनिए। तो जवाहरलाल जी कहिए, आज
1: और
0: कौन
1: गीत
0: सा फिल्म का
1: गाते
0: गीत,
1: चल,
0: जी कौन सा फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: गीत गाते चल 1970,
0: गीत गाता चल।
1: महान गीतकार और सुरकार रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ वो सुर में सजाया हुआ वो गाना सुना दीजिए, जसवंत सिंह के सर में, धरती मेरी माता पिता आसमान।
0: ओके, बहुत ही अच्छा गीत।
1: वो फिल्म में वो अभिनेता सचिन और सारिका जी ने अभिनय किया है, वो गाना मुझे सुना दीजिए
0: जी जरूर सुनाएंगे। और किन दोस्तों को
1: या
0: सुनाना
1: डेडिकेट
0: चाहेंगे?
1: तो करना चाहता हूँ सर पहले आपके,
0: जी जी धन्यवाद।
1: और हेलो फॉरमर सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए।
0: सभी को आप सुनाना चाहते हैं?
1: जी हाँ सर,
0: जी हाँ। तो जवाहरलाल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके
1: हाँ
0: पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: हाँ धन्यवाद सर।
0: ओके।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्ते
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश, कार्यक्रम ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मुझे आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: क्या बात है। जी
1: सर,
0: जी हमें
1: ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी प्रेम सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी सर
0: जी, और कैसा है मौसम आपके वहाँ?
1: जी सर बताना चाहूँगा, काफी गर्मी है, 45-46 डिग्री के करीबन टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे।
0: ओहो जी जी जी जी
1: जी हाँ, मतलब घर से बाहर भी नहीं निकल सकते 10 बजे के बाद में।
0: जी जी जी जी
1: जी बस घर में रहे, कार्यक्रम सुने और मतलब ज्यादा
0: हाँ
1: से ज्यादा पानी
0: जी
1: पिए।
0: जी जी
1: सभी
0: जी
1: श्रोताओं को मैं यही कहूँगा, हमारे आसपास वाले श्रोताओं को।
0: जी जी जी बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, घर पे रहें और रेडियो सुने
1: जी,
0: और
1: अगर
0: खूब
1: जाना
0: पानी
1: जरूरी
0: पिए।
1: हो तो एक कैप पहने, दस्ताने ले जाए साथ में और मुंह पे मतलब मास्क लगाए
0: जी
1: और पानी की बोतल साथ में ले जाए और समय समय पर। जी सर हाँ,
0: हाँ
1: मैं
0: जी हाँ
1: बताना
0: जी
1: चाहूंगा,
0: जी
1: मोबाइल ऐप पे आपके कार्यक्रम सुनता हूँ।

0: ईटानगर के में और आकाशवाणी ईटानगर का नियमित श्रोता बन चुका हूँ।
1: जी
0: हमारे दोस्त है आकाशवाणी जो बताते रहते हैं कार्यक्रम के बारे में लोकेंद्र वर्मा जी, उन्होंने मुझे काफी स्टेशन से जोड़ा है, उनका तहे दिल से शुक्रिया।
1: जी हम भी उनसे उन्हें धन्यवाद कहना चाहेंगे, काफी नए श्रोताओं को वो जोड़ते हैं हमसे। जी जी
0: जी बिल्कुल, उनके पास ना सारी अपडेट आती रहती है ना
1: जी।
0: तो हमारा
1: हाँ
0: एक ग्रुप बना हुआ है हेलो परमाइस रेडियो एक्टा ग्रुप के माध्यम से, तो वो मतलब समय समय पे अपडेट डाल देते थे कि अभी इस कार्यक्रम का मतलब समय हो चुका है, सुनने का भी समय बताते हैं वो और रिकॉर्डिंग का भी समय बताते हैं।
1: क्या बात है क्या बात है। जी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लोकेंद्र वर्मा जी, तो उन्हें तो आप डेडिकेट करना ही चाहेंगे, तो कौन सा फिल्म का गीत आप डेडिकेट करना चाहेंगे?
0: जी अनजाना फिल्म का गाना है कि जान चली जाए पिया नहीं जाए, ऐसा करके गाना है इसमें।
1: ओके हाँ जी
0: जी हाँ सर, ये गाना सुनना चाहूंगा और हमारे सभी ग्रुप के जितने भी मेंबर है ना सभी को डेडिकेट करना चाहूंगा, इसमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
1: अच्छा अच्छा जी जी जी जी
0: जी सर, और ये गाना आपके लिए भी डेडिकेट रहेगा।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: और सर जी सर मैं बताऊँ आपको कि जब मैं कार्यक्रम सुनूंगा ना तो इसको रिकॉर्ड करके भी रखूंगा।
1: अच्छा क्या बात है। जी जी
0: सर
1: जी, तो आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। तो प्रेम सिंह जी सुनते हैं आपके पसंद का गाना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: हाँ, जय बजरंग रेडियो सोता संग बस तेन बंडा वेले चले लक्ष्मण को चाय वाले वो चाय पी लो।
0: जी लक्ष्मण जी, चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी गर्मी में मगर कैसे चाय पी?
1: मगर चाय तो चाय, गर्मी को गर्मी मारती है।
0: जी जी, लोहे लोहा को काटता है वैसे ही। जी, गर्मी गर्मी को काट देता है। जी
1: हाँ
0: जी, जरूर चाय पियेंगे। और कहिए कैसे हो आप?
1: अच्छे हैं, भगवान कृपा है, आप लोग कृपा, आप भी ठीक रहेंगे। ऐसे ही बिल्कुल कार्यक्रम मनोरंजन करते रहें।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहिए, आज गर्मी के मौसम में कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: आज गर्मी के मौसम में अनाड़ी पिक्चर का सुनवा रहे हैं।
0: ओके, अनाड़ी पिक्चर का कौन सा गाना?
1: हमने सब कुछ सीखा, सीखी ना होते आदि।
0: ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, अनारी। हाँ, पुराना वाला?
1: हाँ, पुरानी वाला।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को डेडिकेट करेगा आप?
1: हमारे रहेंगे गजराज लोधी हैं, मांगीलाल चंदेल हैं, बसंतीलाल सुंदरकंद कटारे, ऋषिकेश तिवारी हैं, ये सब दोस्त हैं, ये सब ना चाहे।
0: ओके, तो लक्ष्मण जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: ठीक है सर।
0: ओके, नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका स्वागत है।
1: सर नमस्ते जी, मैं ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया।
0: जी सत्येंद्र कुमार जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए कैसे हो आप?
1: जी सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, और हमें उम्मीद है कि आकाशवाणी ईटानगर परिवार भी अच्छी तरीके से होगा।
0: जी जी जी, हम सभी बहुत ही बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है, और बहुत ही बढ़िया मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं हम लोग।
1: आपके यहाँ मौसम इस समय किस प्रकार का है? जैसे हम यहाँ इस समय भारी गर्मी का सामना कर रहे हैं।
0: जी हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है,
1: वो क्षेत्र ही कुछ ऐसा ही हो जाता है।
0: जी जी जी जी, हाँ हाँ, इलाका पहाड़ी इलाका
1: अभी
0: है।
1: हमारे यहाँ बारिश के तो एक महीने तक कैसे भी आसान है, हालांकि अभी बीच में हो गया है।
0: अच्छा जी जी,
1: लेकिन वो बेमौसम बरसात जिसको कहते हैं।
0: जी जी जी जी, ओके।
1: एक गाना में भी ये शब्द आया है, बेमौसम बरसात हो।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वही हुआ आपके साथ?
1: हाँ, तो अभी कुछ ऐसा ही इधर हुआ है।
0: ओके, तो कुछ महीना और रुकना पड़ेगा बारिश के लिए?
1: हाँ, बारिश के लिए अभी एक महीने का करीब करीब, जुलाई से।
0: अच्छा, बारिश होने की संभावना?
1: अभी इस साल बारिश कुछ लेट होने की उम्मीद है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
1: इस तरफ हमारे जो बुंदेलखंड में है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: लेट आने की संभावना है। आप क्या बोको बागरा साहब बोल रहे हैं क्या?
0: हाँ जी, मैं बोके बागरा बोल रहा हूँ।
1: हाँ, वो मुझे लगा मुझे पहचानने में थोड़ी
0: ओके
1: देर तो हुई।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जी जी हो जाता है। तो सत्येंद्र जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: आज फिल्म इक्का राजा रानी का सुनवा दिया।
0: ओके, गाने के बोल।
1: मेरे सावरे सावरिया मुझ पे सौतन को क्यों लाए।
0: ओ हो, जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: अरे ये हमारा ग्रुप है, हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप, ये इसके सभी सदस्य सुन लेंगे। एक में ही सबको समेट लिया है, एक तो वो सीधा ग्रुप का ही नाम ले दिया, अलग
0: जी,
1: अलग
0: जी,
1: नाम
0: जी,
1: लो।
0: हाँ जी,
1: एक
0: हाँ
1: आका
0: जी,
1: छूट गया तो वो नाराज हो जाते हैं कि हमारा नाम नहीं
0: जी,
1: लिया,
0: जी जी जी बिल्कुल सही कहा।
1: तो इसलिए वो पूरा ग्रुप इन वन कर दिया।
0: ओके ओके, ग्रुप इन वन। जी जी जी, तो सत्येंद्र जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद के गाना।

0: हल्लो फरमाइश।
1: बिल्कुल श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हेलो फरमाइश फोन इन कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आपको हर अंक की तरह ये अंक भी बेहद पसंद आया होगा। आपको बताना चाहेंगे कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: तीसरे गीत सदाबहार नगमों का
1: बिल्कुल सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कारवां में आप सभी श्रोता दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है।

मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मोहम्मद रफी की आवाज में इसी गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां, भूले बिस्तरे गीत। ये गीत थी फिल्म आए दिन बहार कैसे। बढ़ चलते हैं अगले गीत की ओर, और अगला गीत है फिल्म यकीन से।

0: तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है फिल्म आप तो ऐसे ना थे से। आप सुन रहे थे ये गाना मोहम्मद रफी के आवाज में। और श्रोता दोस्तों, ये है सदाबहार हिंदी फिल्म में गीतों का कारवा, भूले बिसरे गीत।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

की कमी के चलते अब वक्त हो चला है हम आपसे विदा लेने का। आपको बताना चाहेंगे कि इसी के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ ही हम हमारे तीसरी प्रसारण सभा के समापन पर भी आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे थे तमाम FM ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता गोलू कालो और मैं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना। जाने से पहले बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही क्षणों में आपको ले चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल की ओर। हम आपसे कल फिर मिलेंगे सुबह के 5:48 से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।

0: 못한
1: नमस्कार। मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम भारत के वैश्विक निर्यात विस्तार में एमएसएमई की अहम भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शिशिर जी, सबसे पहले एमएसएमई की हम बात करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि को ये लगातार गति दे रहे हैं और उनका योगदान अगर हम जीडीपी में देखें तो ये 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 48% से कहीं अधिक है। देश भर में 32,80,00,000 लोगों से ज्यादा की आबादी की आजीविका उन पर निर्भर है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो कोविड काल में शुरू हुई ECLGS योजना को एमएसएमई के लिए जीवन रेखा माना गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस योजना ने भारत में बड़े पैमाने पर एनपीए संकट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सारी प्रबंधन नीतियों को बेहतर किया या फिर हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसे बेहतर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
2: देखिए, कोविड काल में जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं, 30% से ऊपर निर्यात में और 40% से ज्यादा, उनके लिए जो स्थिति जो है वो बुरी ना हो
1: जी।
2: और अभी सरकार ने जब फैसला लिया कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जिस तरह से उद्योगों की और खासतौर पर निर्यातकों की बुरी हालत हुई है, उसमें उनको मदद देने के लिए ECLGS का 5वां संस्करण आ गया। ये 2,50,000 करोड़ रुपए का जो ECLGS है, इसका सबसे ज्यादा फायदा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को मिलेगा। तो अभी के समय में जब हमें निर्यात को रफ्तार देना है, जब हम नए बाजार में जा रहे हैं, जब हमें अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है, तो आधे के करीब में जिनकी हिस्सेदारी है उन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रोत्साहनों की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनका महत्व भी बढ़ जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण पहल सरकार ने समय लिया है और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा जो है आपको 2026-27 जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष है उसमें हमें देखने को मिले।
1: अभी अगर हम बात करें तो MSMED अधिनियम के तहत 45 दिन में भुगतान अनिवार्य करने और समाधान पोर्टल शुरू करने के बावजूद कुछ भुगतान की समस्याओं की बात उठती रही है, तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे प्रभावी तरीके से निपटने में किस तरह की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए?
2: देखिए, कोई भी व्यापारी अगर किसी के साथ व्यापार करता है, सामान बेचता है, तो उसको समय पर भुगतान मिलना अनिवार्य होता है। अब इसके लिए अगर 45 दिन की समय सीमा तय की गई है, इसके बावजूद भी एमएसएमई का बकाया जो है वो हमने देखा है वो बढ़ता रहा है। सरकार ने भी काफी चिंता जताई और समय समय पर कदम भी उठाए हैं। अब देखिए, ऐसी सूरत में आपके पास विकल्प क्या होता है कि आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए। जब आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं तो उसकी लागत बढ़ जाती है, उससे आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ता है। तो अब के समय में जेम के जरिए, जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, या फिर हम कहें कि जो सरकारी विभाग है, वो कम से कम समय में भुगतान कर देते हैं। देखिए, रियल टाइम भी कई जगहों पर होने लगा है, लेकिन अभी उसे व्यापक स्तर पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर वो समय सीमा कम हो तो इन एमएसएमई के लिए जो कार्यशील पूंजी की लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी, और वो अगर कम होगा तो उससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर होगी, अपने जो कुछ भी उनके उत्पादन की प्रक्रिया है या जो व्यापार है उसको आगे चलाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उसके अलावा हमें लगता है कि सरकार को और इस मामले में एक निर्देश जो है उस पे सख्ती से अमल होना चाहिए कि आपको कम से कम समय में भुगतान करना है।
1: शिशिर जी, अभी आपने जेम की बात की तो इसके साथ में TREDS की बात हम कर ले, एमएसएमई संबंध हो या फिर चैंपियंस पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये जो पहल की जाती है सरकार को एक तरह से एमएसएमई इकोसिस्टम बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है, इनसे आपको क्या लगता है कि और कितना ये बढ़ावा देंगे या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमें देखने को मिल सकती है छोटे उद्यमों में?
2: आपने जो 3 खास प्लेटफॉर्म का जिक्र

0: या चाहे वो TRDS की बात हम लोग करें या चैंपियन प्लेटफॉर्म की बात करें, इन सब के जरिए कोशिश क्या है कि MSME जो एक लंबे समय तक अनौपचारिक क्षेत्र में रहे हैं उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने की कोशिश की जाए, और औपचारिक क्षेत्र में लाने के बाद उनको हैंड होल्डिंग किया जाए, यानी कि उनको अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिले। देखिए, जब एक ही तरह का सामान 10 लोग बनाते हैं तो ऐसे में जरूरत यह बन जाती है कि उसमें से हम किस तरीके से उन 10ों की मदद करते हैं जिससे कि वो थोड़ी अपने उत्पाद में विविधता लाएं और ताकि वो बाजार में बने रहें। अचानक आप नहीं कह सकते कि नहीं आप यही उत्पाद बनाएंगे और आप यही उत्पाद बनाएंगे, आप यही उत्पाद बनाएंगे, तो उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कैसे विकसित करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीते वर्ष का बजट देखेंगे तो उसमें MSME की परिभाषा में भी बदलाव किया गया, यानी कि उनके लिए जो टर्नओवर और निवेश की सीमा है वो बढ़ा दी गई थी। इसका फायदा क्या है, और ये जो आपने तीन खास पहल का जिक्र किया, अगर आप चारों को मिला दें तो वैश्विक स्तर पर जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा है कि वहां पर MSME को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है, और इन MSME को वैश्विक मंच पे अपने कारोबार व्यापार को बढ़ाने में इस तरह के प्रयासों से, इन तरह के पहलों से जो है वो काफी मदद मिलेगी।
1: शिशिर जी, वैश्विक स्तर पर हम देखें तो सरकार काफी हद तक प्रयास कर रही है कि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े और MSME को बढ़ावा भी मिले, साथ में कई ऐसी चीजें जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर किया जा सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है।
2: विश्व की चुनौतियों के बावजूद भारत एक प्रकार से लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, हमारा निर्यात भी आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष का भी निर्यात $863 बिलियन यानी पिछले वर्ष से लगभग 5% ज्यादा। गुड्स में भी बढ़त है, सर्विसेज में भी बढ़त है, और आने वाले वर्ष का टारगेट यानी अभी जो वर्ष चल रहा है उसका टारगेट हमने और बढ़ा रखा है कि इस वर्ष हम सब मिलकर $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें। ये आने वाले दिनों में अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।
1: तो शिशिर जी, अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह से बात कही, एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। हम वापस थोड़ा सा अगर आकर के देखें तो खुदरा और थोक व्यापारियों को वर्ष 2021 से MSME दायरे में शामिल किया गया है और इसमें लगातार इन बातों को बढ़ावा दिया जाए कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो देश की जो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की गतिविधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसमें कितनी आपको बढ़त देखने को मिल रही है?
0: देखिए, आज के दिन में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे प्रयासों का असर ये हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग औपचारिक व्यवस्था में आ रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं GST रजिस्ट्रेशन को लेकर के। GST में लगभग 1,60,00,000 जो है वो रजिस्टर्ड SSE हैं। अब अगर आप प्री GST रिजीम को देखें, 30 जून 2017 की स्थिति देखें, तो लगभग ये संख्या 66,00,000 थी। अब 1,60,00,000 है, और इस 1,60,00,000 में बड़ी संख्या वो है जिनका सालाना कारोबार 40,00,000 रुपए या 20,00,000 रुपए से कम है। GST की अनिवार्यता ये कहती है कि आपको 40,00,000 का कारोबार होना चाहिए, और अगर आप पूर्वोत्तर के राज्य में हैं या ऐसे विशेष क्षेत्र में हैं वहां पर आपका 20,00,000 होना चाहिए गुड्स के मामले में, और सेवा के मामले में 20,00,000 और 10,00,000 रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा छोटे कारोबारी GST के दायरे में आते हैं, क्यों आते हैं, उसका कारण हमें समझना होगा। कारण यह है कि जब आप व्यापार करने जाते हैं तो अगर आपके पास GST का पंजीकरण होता है तो आपके लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। सामने वाला व्यापारी आपसे कहता है, सामने वाला बड़ा उद्योग आपसे कहता है कि आपका GSTN है कि नहीं है, आप कहते हैं हमारा GSTN है, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो सीमलेस हो जाता है, यानी कि कहीं कोई व्यवधान नहीं है,
1: आसानी होती है।
0: बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बड़े उद्योगों के लिए क्या किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि जो बिल्कुल निचले स्तर पे जो हमारे कारोबारी व्यापारी हैं, जो हमारे अर्थतंत्र का एक अहम हिस्सा है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको GST का एक छोटा सा उदाहरण दिया। इसी तरीके से आप अगर आपने शुरू में जिक्र किया था कि लगभग 32 करोड़ लोग जो हैं वो MSME पर जुड़े हुए हैं, ये तो वो संख्या जो कि प्रत्यक्ष है। अगर आप अप्रत्यक्ष देखें तो करीबन 50-60 करोड़ लोग जो हैं वो MSME से जुड़े हुए हैं। इन संख्या के आधार पर अगर हम इन कारोबारी व्यापारियों को बढ़ावा नहीं देंगे तो आपका अर्थतंत्र आगे नहीं चलने वाला है। अर्थतंत्र में जब 7-7.5% की विकास दर की जरूरत होती है तो केवल बड़े उद्योग हिस्सेदारी नहीं करते हैं बल्कि छोटे और स्थानीय स्तर के उद्योग की जो भूमिका होती है वो काफी अहम हो जाती है।
1: तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और अर्ध शहरी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी GDP में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और साथ

0: में क्या ये भी कहा जा सकता है कि हमारी जो आर्थिक रणनीति है वो छोटे उद्योगों पर काफी हद तक केंद्रित की जा रही ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को बढ़ावा मिले?
1: अगर आप पिछले 12 साल में योजनाएं देखें, खासतौर पे छोटे उद्योगों के लिए योजनाओं की बात अगर मैं करूं, तो उसमें उद्यमिता से लेकर के कारोबार व्यापार चलाने तक की व्यवस्था की गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास स्टार्टअप की स्कीम है।
0: जी
1: अगर आप एक महिला उद्यमी हैं तो स्टैंडअप की स्कीम है, जहां पर महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर अगर आप कारोबार शुरू कर देते हैं तो आपके पास मुद्रा के तहत आपको व्यवस्था मिल जाती है। तो अगर आप इन योजनाओं को, हर योजना को एक दूसरे से जोड़ करके देखें, तो व्यापार शुरू करने से लेकर के व्यापार चलाने और व्यापार बढ़ाने का रास्ता आपके लिए बनाया जाता है। तो आज के समय में जब हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, जब हमें 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की हो जाती है कि वो क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में निर्यात में 30%, 40-45%, 48% योगदान करता है, उसके लिए हम और नीतियां कितना सरल और सहज बना सकते हैं। 12 सालों का सफर में हमने ये देखा है कि ऐसा
0: जी
1: हुआ है और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है वो प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी।
0: शिशिर जी, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया है। डिजिटलीकरण जो एक बड़ा पथ रहा है जिस पर आगे बढ़ करके हमने काफी चीजें हासिल की हैं, उद्यम की हम बात करते हैं, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, लगभग 8 करोड़ से ज्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। तो इस तरह का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ये कितना ज्यादा लाभदायक हुआ है अब तक छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने और बड़े उद्योगों को और भी ज्यादा उन्हें विस्तार देने के लिए?
1: देखिए, डिजिटल व्यवस्था का दो बड़ा फायदा होता है। एक बड़ा फायदा यह है कि आपका सब कुछ जो है वो एक पारदर्शी तरीके से है। आपने सरकार को क्या टैक्स दिया, आपने सरकार के पास कौन सा फॉर्म जमा किया, वो सारा का सारा सिस्टम में उपलब्ध हो जाता है। उसमें रियल टाइम ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता है और कोई आपके यहाँ आकर के ये नहीं कह सकता है कि आप ये रजिस्टर दिखाओ, आप वो रजिस्टर दिखाओ, कच्चा दिखाओ, पक्का दिखाओ, ये सबकी गुंजाइश नहीं बनती। आप सब कुछ जो है एक पारदर्शी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे वो आंकड़े उपलब्ध करा देते हैं, तो आपके बारे में सरकार को एक स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। आपके जैसे व्यापारियों की जानकारी जब सरकार के पास आती है तो सरकार के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होती है। हमें डिजिटल व्यवस्था से यह पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए हमें विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमने जिक्र किया ECLGS 5 का।
0: जी
1: अब ये ECLGS 5 की बात क्यों आई, अचानक ऐसा क्यों लगा सरकार को कि नहीं हमें कुछ नए सिरे से जो है इनको हमें मदद करनी चाहिए? क्योंकि देखा गया कि जो उद्योग थे वो ऋण अदायगी में उनको दिक्कतें आ रही थी क्योंकि आपका भुगतान बाहर से नहीं मिल पा रहा है, तो
0: जी
1: अब हम उनको किस तरीके से मदद करते हैं? अब यदि वहां पर अगर डिजिटल व्यवस्था नहीं हो, वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो जिसमें जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा है कि रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग संभव हो पाता है।
0: जब व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो कुछ ना कुछ कभी कोई खामी रह जाती है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इन चीजों के लिए समाधान और नए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसे डिजिटल तंत्र भी हमारे पास हैं, जो भारत की न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने से छोटे उद्यमों और बड़े उद्यमों को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि आप सीमलेस होकर के अपना काम कर सकें।
1: बिल्कुल, आपको शिकायत है, सरकार ने कहा कि आपने ये नियम का पालन नहीं किया, आपको डिजिटली उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप डिजिटली ही उसका जवाब आप दे दे। अब जैसे एक उदाहरण आपको दूं फेसलेस असेसमेंट का। अब इनकम टैक्स की व्यवस्था ये कहती है कि आपको आयकर विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग को लगता है कि आपने जो रिटर्न दाखिल किया उसमें कुछ कमी है, तो वो आपको एक नोटिस ईमेल के जरिए भेजता है। उसी के आधार पर आप जो कंप्यूटर व्यवस्था है उससे आप जुड़ते हैं। सामने वाले अधिकारी को ये नहीं पता होता कि आप कौन है और आपको ये नहीं पता होता सामने वाला अधिकारी कौन है। दोनों के बीच में एक जो डिजिटल सिस्टम है वो हमारा काम करता है। तो ये जब इस तरीके का रिजोल्यूशन मैकेनिज्म या इस तरीके की फेसलेस व्यवस्था शुरू होती है, तो एक विश्वास बनता है कि हम खुल करके अपनी बात कह सकते हैं और उसमें समाधान में समय कम लगता है।
0: शिशिर जी, ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में जो पहले छोटे उद्यम हुआ करते थे वो पहले एक तरह से अनौपचारिक होते थे, हमें जानकारी नहीं होती थी कि कहां पर क्या बन रहा है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं उनसे उन्हें कितना लाभ हुआ है और जो उपभोक्ता है उसे कितना लाभ हुआ है?
1: ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्योग है जिनको हम लोग कुटीर उद्योग कहते रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत होती थी बाजार तक पहुंचने में। आपने सामान बहुत अच्छा बनाया लेकिन बाजार में पहुंच नहीं पाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके लिए वो एक माध्यम तैयार कर दिए हैं, माध्यम आपको मुहैया करा रहे कि आप बाजार तक पहुंच सके। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप बाजार में पहुंचते हैं तो आपके अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है। ये कुटीर उद्योगों के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इस तरह के प्रावधान किए गए, वो छोटे उद्योग

0: साथ साथ बड़े उद्योगों के लिए भी लाभदायक है।
1: बिल्कुल, बड़े उद्योगों के लिए कई योजनाएं हैं, अब जरूरत यह है कि उसी तरीके की योजनाएं छोटे उद्योगों के लिए, मझोले उद्योगों के लिए भी
0: जी
1: लागू किए जाएं, और लागू कई किए गए हैं, उनका फायदा भी मिला है। वही नतीजा है कि 50% निर्यात में हिस्सेदारी जो है करीब करीब
0: जी
1: 50% एमएसएमई का हो चुका है।
0: जी शिशिर जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने के लिए फैसला लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की नई पहलों की तलाश करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकोई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2021-32 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रैबिस से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना

0: नाम वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार में विशेष पैकेज की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ में रातों में अधिक गर्मी पड़ने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर में भीषण लू चलने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट और एकदिवसीय फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values and democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visit to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the early examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across states to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The apex court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. The order came in a Suomoto case initiated on 28th of July last year following media reports highlighting incidents of stray dog bites and rabies cases, especially among children in the national capital. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit, scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a social media post, cited an aide to President Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. This will be Putin's second visit to India in less than a year. The IMD has warned of severe heatwave conditions in northern India over the next few days. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. In IPL cricket, Lucknow Super Giants have set a target of 221 runs for Rajasthan Royals at Sawai Man Singh Stadium, Jaipur, chasing the target. Rajasthan Royals were 56 for nil in 5 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 2% की वृद्धि हुई प्रधानमंत्री नॉर्वे स्वीडन आइसलैंड फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे दमिश्क में सीरिया के रक्षा मंत्रालय के बाहर हुए बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत और कई घायल विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने इबोला वायरस के तेजी से फैलने पर चिंता व्यक्त की मृतकों की संख्या 131 हुई और मनोज कुमार शर्मा को नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे
3: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों प्रयोगशालाओं स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग को मजबूत किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है नो कॉम्प्रोमाइज नो डबल स्टैंडर्ड
3: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज देर रात इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: सुशील राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा

0: सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। दक्षिण अफ्रीका स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि रूसी राष्ट्रपति 12 से 13 सितंबर तक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर पुतिन की यह दूसरी भारत यात्रा होगी। विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इबोला वायरस का प्रकोप कई सप्ताह पहले शुरू हुआ था। मंत्रालय के अनुसार इस प्रकोप के कारण अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। एक रिपोर्ट।
2: कांगो के स्वास्थ्य मंत्री सैमुअल रोजर काम्बा ने कहा कि इस बात की जांच जारी है कि क्या मौतें और 513 संदिग्ध मामले वास्तव में इस बीमारी से जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने प्रकोप के तेजी से फैलने और बढ़ते पैमानों पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि एजेंसी की आपातकालीन समिति आज बाद में बैठक करेगी। अब तक बुनिया, उत्तरी कीवू, विद्रोही नियंत्रित राजधानी गोमा, मोंग, बवुलु, बुटेम्बो और नियाकुंडे में मामले सामने आ चुके हैं। WHO ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निगरानी बढ़ने के साथ मामलों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की यात्रा पर हैं। यह यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेचिंग दौरे के एक सप्ताह से भी कम समय के बाद हो रही है। क्रेमलिन ने कहा है कि पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सीरिया में आज दमिश्क स्थित रक्षा मंत्रालय भवन के बाहर बम विस्फोट में एक सैनिक की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सैनिकों ने दमिश्क के मध्य बाबशर्की जिले में एक बम बरामद किया था जिससे विस्फोट करने की तैयारी थी। जब वे इसे निष्क्रिय करने के प्रयास कर रहे थे तभी पास ही एक कार में विस्फोट हो गया। मंत्रालय ने बताया कि विस्फोट रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक भवन के बाहर हुआ लेकिन उसने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। किसी ने भी तत्काल इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बल घटना की जांच कर रहे हैं। लेबनान ने कहा है कि हिजबुल्ला के साथ जारी संघर्ष में इसराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या 3,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय के अनुसार कल तक 3,020 लोग मारे जा चुके थे जो युद्ध विराम के बावजूद हिंसा में एक और बड़ी वृद्धि का संकेत है। 2 मार्च को ईरान समर्थित शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद संघर्ष तेज हो गया है क्योंकि इसराइल ने कथित तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता को मार डाला था। नेपाल की संसदीय सुनवाई समिति PHC ने आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डॉ मनोज कुमार शर्मा को उच्चतम न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। परंपरागत रूप से नेपाल की न्यायपालिका में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की परंपरा रही है जिसे संस्थागत स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान पर होने के बावजूद डॉ शर्मा को वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल, कुमार रेग्मी और हरिप्रसाद फोयाल से ऊपर रखते हुए इस पद के लिए चुना गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।